0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उनां विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इनां दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: सिग्नल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लम्बिंग का फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2120 3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
1: ते गुरु अंगद देव जी महाराज जदों आए है ना ते उदों जिहड़ा पिछला सिद्धांत देखो तो चले ही आ रहा है सांझीवालता दा सारयां नूं कलावे च लैण दा ना। फिर लोकी कि उन्हां मैसेज वधिया लग्या गुरु साहिब जी दा, उन्हां ने भी सारयां नूं प्यार करदे ने सिंपल लैंग्वेज च मैसेज देंदे हैगे ने, उह वधिया लग्या। पर लोकी की करदे सी कि संगत च ते आ जांदे सी पर फिर भी अजे तक मन च उह जातिवाद वाला जिहड़ा हैगा कि नहीं सी निकलिया हैगा। फिर गुरु अंगद देव जी महाराज ने कहा भी नहीं होना, इदां करो भी पंगत जिहड़ी हैगी ने इह भी जरूरी कर दो, पहलां जिहड़ा हैगा पंगत च बैठो ते फिर जिहड़ा हैगा कि संगत फिर बाद च करनी है की है ना, तां कि क्योंकि मैसेज आपां कहे ते सांझीवाल ते सुन ते लिया तुसीं संगत दे विच, पर प्रैक्टिकली तुसीं जिहड़े हैगे अजे तक शुगर छाती दे विच पए हैगे हो, दैन उहनां ने मतलब एक तरह दी कंपल्शन ला दित्ती
2: प्रैक्टिस विच लिआउण वास्ते।
1: प्रैक्टिस लिआउण वास्ते तुसीं देखो भी किन्ने ज्यादा प्रैक्टिकल धर्म हैगा इह वाला है ना, भी सिखिज़म जिहड़ा भी उहनां ने कहा नहीं कि बैठो पहलां पंगत च बैठो। अच्छा बाद च आपां नूं इह वी आंदा हैगा कि उहनां ने पैसे भी देने शुरू कीते कि पैसे दे लालच नहीं भावें बैठण है ना। हांजी तो कहण दा मतलब कि उहनां ने फोर्स किया जां प्रैक्टिकली एफर्ट्स किए कि उस सिद्धांत जिहड़ा आपां कह रहे हैं उहनूं लागू किया जाए, ठीक है
2: अमली तौर ते
1: जिहड़ा हैगा कि उहनूं जिहड़ा हैगा कि लागू किया जाए। फिर जदों उहनां ने मैं कहा ना भी समाजिक जिहड़ियां समस्यावां सी समाजिक लोड़ां सी लोकां दीआं उह भी पूरियां कीतियां। हुण आपां गुरु अमरदास जी महाराज ते आए ने, उहनां ने जिवें बौली साहिब बनाया गोइंदवाल साहिब ना, तो पाणी दी एक्चुअली दिक्कत सी उत्थे किल्लत सी, उहदे वास्ते उहदे च की हुंदा कि जदों वी आपां कोई चीज़ करदे आ ना उहदे च कई चीज़ां आपां कवर अप कर लैंदे, कई सिद्धांत लागू कर लेने। एक तो है लोगों की लोड़ पूरी होगी, दूसरा है कि सारे इको जिमें मतलब बौली तो पानी भरन गए,
2: बिल्कुल
1: ठीक है। यह नहीं है कि भी कोई अमीर का खूह वखरा है जी दूजे का वखरा है ना, ये असी आप हूँ अपने जोड़े है कि जीवन च भी मैं चीज़ें वेखी हुई हैं कि जिमें साडे पिंड ना खूह होंदा सी ते एक साइड तो जिहड़े हैगे ने कि साडे जिमें मैं भी कह लो कि 100 कट शड्यूल कास्ट वाले से वह उधर ही भरते ही बेचारे, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ।
2: ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,
1: ਹਾਂਜੀ
2: ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਬਾਵਲੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਤ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਵਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਵਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ
1: ਬਿਆਸ
2: ਨਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ
1: ਸੀ
2: ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।
1: ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਜੋ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਹਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਾਉਣਗੇ
2: ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਨਦੀ ਸੀ,
1: ਹਾਂ
2: ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
1: ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ

0: 4333 5555 यानी 4034335555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज का पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी गुजरी महला पंजवां जिस मां

पंक्तियां च महाराज कहिंदे पातशाह हे रब जी मैं भटकदिया भटकदिया फिरत प्रभ आया परिया तो शरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर भयो दर्शन दे के फिरत थां थां ते भटकदा रहा पर हुण सगल द्वार को छड़ के गयो तुहारो द्वार हुण तेरी शरण लै लई है तुमरे द्वार आया मैनू पता लगा भै भंजन हर राया सारे दुखां दे डर नाश करन वाला एक रब ही है वो आप

गुरमुख एक बार सारे गज के आखो सतनाम, एक बार प्यार नाल आखो धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन धन श्री गुरु अर्जन। किड्डी वड्डी कृपा कीती महाराज ने, पहला ते बंदे दे औगण दसे आ, ते अखीर दे विच फिर रब अगे तरला भी लै लिया। जिवें इक सियाणी मां उहदे पति नूं बच्चे दे पिता नूं दसदी आ, बड़ा माड़ा जे, बड़ा विगड़ गया जे, बड़ा काम खराब करदा जे, पर एक कृपा करो इहनूं बचा लो, इहदा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ते महाराज पहलां ते साडे औगण दसदे आ रब दे सामने, फिर रब अगे तरला लैंदे आ, ते तेरा ही इहनूं कढ ला बचा ला। एक बचन सुखमनी साहिब च है, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, गर्त प्रीत भस्म संग होए, अंध कूप मैं पतत बिकराल, नानक काढ़ लिहो प्रभ दयाल। आ बचन है महाराज का, पहला सारे औगण दसे, जिहड़ा नहीं करना सी वह भी कर रहा है, माड़े पासे तुरिया जांदा है। रब जी अंध कूप हनेरे खूह दे विच, पतत पतत दा मतलब डिग्गिया है, बिकराल बड़ा ही डरावना खूह है, अंध कूप में पतत बिकराल, ते तरला लैके कहिंदे नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल, दया दे घर इहनूं कढ़णा वे ते तूं। आ भी शब्द विच मारे ने पहला उगणा दा जिक्र कीता, ते अखीर च मारे सच्चे पातशाह ये रहमत कर रहे ने। भाई सब सुनायो फिर जरा।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East।

0: أجري. प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
2: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
3: एक महावीर जैन हुए हैं जैन धर्म के अंदर, उनकी जीवनी से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है जो दास और परमात्मा कबीर जी आपको समझाना चाहते हैं। ऋषभ देव जी ये बहुत नेक राजा थे, सतयुग के अंदर बहुत ही अच्छे राजा थे, परमात्मा को चाहने वाले थे और वेदों में कबीर देव की महिमा बहुत लिखी है। तो जो ऋषि लोग थे, जो ऋषभ देव जी के गुरु ब्राह्मण थे, उनसे ये प्रश्न किया करते थे ऋषभ देव जी कि वेदों में आप बताते हो कि कवि नाम का कोई प्रभु है, कबीर, कबीर देव है, तो अनुवादकर्ता कर देते थे वो कवि है, कवि है, तो उसका नाम चलो कवि है क्योंकि वो परमात्मा अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों शब्दावलियों के माध्यम से अपना ज्ञान प्रचार प्रत्येक बार करने आता है, इसलिए उसको कवि कहते हैं। हम उसको कबीर देव, वेदों में लिखा कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, वो कवि ही मान लेते हैं। तो वहां लिखा है परमेश्वर की वाणी में, गरीबदास जी ने कहा है कि ऋषभ देव के आइया कवि नाम में करतार है, उस कवि नाम ते आगे वे। वैसे तो कबीर देव का अर्थ कवि साहब, अगर हम वैसे व्याकरण अनुसार करें तो कवि साहब, कवि साहब माने वो जो परमात्मा उसका नाम ही कवि साहब है, कवि, हम उसको कबीर साहब कहने लगे, कबीर। सिर्फ उसमें अंतर है, जैसे भाषाओं में अंतर होता है, तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा। तो ऋषभ देव जी के वही परम अक्षर ब्रह्म उस प्यारी आत्मा को समझाने के लिए कवि नाम से आए, कवि, और कहने लगे मैं वो परमात्मा हूं जो वेदों में वर्णित है कवि, क्योंकि वो अज्ञानी ऋषि महर्षियों ने ऋषभ देव जी को भ्रमित करके अनुवाद गलत करके उसको कवि सिद्ध कर रखा। वैसे वो कबीर देव है, उसको कबीर देव ही बोलना चाहिए हमने, कबीर देव। जैसे यजुर यजु है, यजु कहने से क्या लाभ, यजुर वेद साथ बोलना दत् जवाबात, तो वो कबीर देव है, कबीर देव, कबीर साहब है। तो परमात्मा आए, ऋषभ देव जी को बहुत सुंदर ज्ञान सुनाया, ऋषभ देव जी बहुत प्रभावित हुए और इतना बैराग हो गया कि राज्य भी त्याग दिया, अपने पुत्रों को सबको, भरत आदि को सबको राज्य दे दिया। लेकिन उसी समय ये ब्राह्मण लोग ये गणे परमात्मा एक ही ऋषि रूप में आते हैं, मिलते हैं, तो बाद में ऋषभ देव जी को उन नकली काल प्रेरित गुरुओं ने ब्राह्मणों ने भ्रमित कर दिया कि वो झूठा है, कपटी है, वो गलत ज्ञान बताता है, ब्रह्म से ऊपर भगवान नहीं, ब्रह्म लोक तो ऊपर कोई स्थान नहीं। अब ऋषभ देव जी ने ओम नाम का जाप और साथ में हठ योग 1000 वर्ष तक किया, 1000 वर्ष तक तप किया, उसके बाद निराहार रहकर कुछ नहीं खाया 1000 वर्ष तक। इतने तगड़े शरीर होते थे पहले सतयुग। तो जब उन्होंने प्रथम बार अपनी उपासना पूर्ण की और वो व्रत खोलिया तो सबसे पहले धर्म देशना बोल रहे दीक्षा को, अपने पौत्र भरत के पुत्र को, अपने बेटे के बेटे को यानी पोते को, मारीचि नाम था उसका, सबसे पहले ऋषभ देव जी ने उस मारीचि को नाम दिया। और ऋषभ देव जी केवल ओम मंत्र ही जाप करते थे और साथ में हठ योग भी करते थे, जो खिचड़ी ज्ञान ब्रह्मा जी के द्वारा काल प्रेरणा से जो ग्रहण किया हुआ है। इसके लिए थोड़ा सहयोग लेते हैं। ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र यानी पोते मारीचि को प्रथम मंत्र दिया, पहला चेला वो ही मुंडिया, और वो मारीचि वाली आत्मा आगे चलकर महावीर जैन कहलाए। एक प्रमाण जैन धर्म का, एक जैन संस्कृति कोष 3 भागों में है और इनको वो फाइनल मानते हैं, जैसे हम गीता जी वेदों को मानते हैं ऐसे इन तीनों पार्ट को, 3 पार्ट हैं ये, तो इनको ये अंतिम मानते हैं। और प्रथम भाग में आपको दिखाते हैं, देखिए जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास प्रथम भाग, प्रोफेसर है भागचंद्र जैन भास्कर, ये कहां से प्रकाशित है, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला एवं पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, समंती प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपा है, जैन इतिहास, जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास संस्कृति कला पुरातत्व प्रथम खंड, लेखक प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक हैं डॉक्टर प्रेम शंकर द्विवेदी, मानद निदेशक कला एवं धर्म शोध संस्थान B33A1 न्यू साकेत कॉलोनी BHU वाराणसी फोन नंबर इतना। और भागचंद्र जैन दूसरा है प्रकाशक, भागचंद्र जैन भास्कर ये वही है, लेखक भी है। और ये कहां से प्रकाशित है, ये निश्चय प्रकाश, ये प्राप्त स्थान। अब ये है, ये किसने, ये पुण्य स्वर्गीय पुण्य पूज्य पिता श्री गोरे लाल जी जैन एवं मातु श्री पूजा तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थि में सादर समर्पित है। ये ऐसे ये भागचंद्र जैन के माता पिता की तरफ से को समर्पित है। इसके प्रश्न नंबर 175 पर ऋषभ देव के पौत्र मारीचि भरत के पुत्र, यानी भरत जो इसका पुत्र था, ऋषभ देव के पौत्र मारीचि अर्थात भरत के पुत्र, मारीचि भरत का पुत्र था जो ऋषभ देव का पुत्र था, को पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है, यानी मारीचि को। और यही मारीचि जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना, यानी महावीर जैन बना, यही आत्मा आगे चलकर। 176 पृष्ठ पे जैन संस्कृति कोष, जैन इतिहास कला और पुरातत्व, तीर्थकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं, तीर्थकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे, उनकी माता मरुदेवी थी, वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया, दो पत्नियां थी। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को जन्म दिया और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया, यानी ऋषभ देव जी के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार, 1 वर्ष तक रहे, एक दार में गलत कह गया, अगर 1000 वर्ष तप किया, 1 वर्ष तक निराहार रहे यानी कुछ नहीं खाया। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रियांश कुमार ने इक्षु रस देकर, ईख का रस, गन्ने का रस पिलाकर उनकी इस निराहार वृत्ति को यानी उस व्रत को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि, फिर 1000 वर्ष तक फिर तपस्या की उसने। ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया, या कैवल्य मुक्ति बोलते हैं, कैवल्य, अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया और धर्म देशना प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया अपने आप 1000 वर्ष तक तप करके, और उसमें जितना उसने ज्ञान हुआ, जो अभी प्राप्ति हुई, उसके आधार से धर्म देशना यानी नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना, प्रथम नाम भरत के पुत्र मारीचि को दी, यानी उसको दीक्षा दी अपने पौत्र को, जो बाद में 24 में तीर्थ कर महावीर बने, ये महावीर जैन बना। अब यहां से हमने इतना ही लेना है बस। अब पुण्यात्माओं, ऋषभ देव जी ओम मंत्र का जाप करते थे और ये भी इसमें ओम को आगे चलकर अणोम करने लगे, अणोम अणोम अणोम नहीं, ओम है इसलिए सीधा ओम बोल दे, अलग से इसकी प्रक्रिया आने वालों ने अन्य तीर्थकरों ने कर दी। प्रथम तीर्थकर जो महान आत्मा ऋषभ देव जी थे, उन्होंने केवल ओम नाम का जाप किया। इसको ये करते कैसे थे, ओम ऐसे करते रहते थे, तो बाद वालों ने उनको अणोम कहने लगे, अणोम, लेकिन ये ओम है। तो ऋषभ देव जी ओम नाम का जाप करते थे और उन्होंने सातवां अठ योग भी करते थे, जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण होता है, जो वेदों अनुसार और गीता अनुसार नहीं है, वो मनमाना आचरण होता है। जो वेदों और गीता से ली गई साधना है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, लेकिन वो कितनी साधना कहां तक की है उतना ही लाभ मिलता है उसको। तो वही मंत्र, वही साधना, वही विधि ऋषभ देव जी ने अपने पौत्र, अपने पोते मारीचि को दी, जो भरत का पुत्र था, और मारीचि के जीव को इस साधना के करने से कितना दुख और कितना सुख हुआ, ये वर्णन करते हैं। ये देखिएगा, ये एक पुस्तक है, इन्हीं बड़े जैन संस्कृति कोश से ही निष्कर्ष निकालकर लिखा गया है। आओ जैन धर्म को जाने, धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला, कौन बनेगा सबसे ज्ञानी, ये है ओम अरिहंताम अणोम अणोमो, ये मंत्र मंत्र यज्ञ, प्रवण चंद्र जैन, एमए शास्त्री, इन्होंने इसको लिखा है। आओ जैन धर्म को जाने, लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, एमए शास्त्री, जम्बू द्वीप हस्तनापुर, प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बू द्वीप हस्तनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश, ये इनके प्रकाशक हैं। और ये मुद्रित है दिनेंद्र जैन, न्यू ऋषभ ऑफसेट प्रिंटर्स, मेरठ, फोन नंबर इतना। ऋषभ देव जी के कोई गुरु नहीं थे, वो अपने आप ही अपनी साधना किया करते थे। हम 293 पर चलते हैं, वो जो मारीची वाले जीव ने जो साधना ऋषभ देव जी से लेकर की थी, ओम नाम का जाप और अन्य साधना जो तप किया, उससे उसको क्या परिणाम मिला? 293 पृष्ठ पे। आओ जैन धर्म को जाने विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? अन्य 5 नाम हैं। एक वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एमएम वर्धमान। अब 294 पे आओ जैन धर्म को जाने। महावीर भगवान, श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? उत्तर है पूर्वा नामक भील की पर्याय से। प्रश्न, पूर्वा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, वो पुष्कलावती देश की पुंडरीकिणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनि राज से मदमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। श्री महावीर भगवान का जीव पूर्वा भील की प्रिया यानी शरीर से कहां गया? उत्तर है कि पहले 100 धर्म स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहां गया? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी इस मारीची से पहले का भी इसका एक जीवन बता रखा है। उसके बाद ये ऋषभ देव का पोता मारीची हुआ, महावीर का जीव। फिर वो ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक में गया ऋषभ देव जी से नाम लेकर, ओम नाम का जाप करके ये ब्रह्म लोक में गया। ब्रह्म स्वर्ग कहो, ब्रह्म लोक कहो, ब्रह्म लोक, ब्रह्म स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर जटिल के शरीर को छोड़कर कहा गया, 100 स्वर्ग में एक सागर की आयु वाला देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहा गया, इसी भरत क्षेत्र में सुतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम क्षत्री से अग्निसह नामक पुत्र हुआ। अग्निसह फिर कहा गया, स्वर्ग में गया। फिर स्वर्ग से कहा गया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नाम का पुत्र हुआ। अग्निमित्र कहा गया, महेंद्र स्वर्ग में गया, ये इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से कहा गया, ये मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। फिर भारद्वाज कहा गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, फिर इंद्र के लोक में गया। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहा गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला नगोदिया जीव होया। ओहो, अरब देखना, ओ मेरे मालिक, कलेजा मुंह को आता है। अब निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहां गया? अब उसके बारे में क्या बताता है? उत्तर है, अनेकों भव धारण किए, जो इस प्रकार है, 1000 1000 के वृक्ष, 1000 तो आंख का वृक्ष बना, और 80000 सीप के भाव, 20000 नीम वृक्ष के भाव, 90000 केली वृक्ष के भाव यानी केले के, और 3000 चंदन के वृक्ष के शरीर धारण किए, और 5,00,000 कनेर वृक्ष के भाव, और 60000 वैश्या के, 60000 वैश्या के भाव, और 5,00,000 शिकारी के शरीर। ओहो, यहां फोड़ लिए कर्म, 5,00,000 शिकारी बना, 20,00,000 हाथी के भाव, और 60,00,000 गधे के भाव, 60,00,000 गधा ते कब बना बतेरा, हे भगवान, 60,00,000, ओहो, 60,00,000 गधे के शरीर, और 30,00,000 कुत्ते, रही खी कसरिया निकलगी कुत्ते के जीव। उत्तरा, एक का कुत्ते का जीवन देख लो कितना दुखदायी होता है, और 30,00,000 कुत्ते का शरीर, 60,00,000 नपुसंग के भाव, और 20,00,000 स्त्री के भाव, 90,00,000 धोबी के शरीर भाव, 8,00,000 घोड़े के भाव, और 20 करोड़ बार बिल्ली के भव और 60 लाख बार गर्भपात से मरण और केवल 80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया। अब उन आत्माओं, अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें आकर के यही बताना चाहते हैं कि तुमको परम संत मिला नहीं, सत साधना प्राप्त हुई नहीं, सत्संग तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से तुम्हारे ये जन्म और मृत्यु के कष्ट समाप्त नहीं हुए। और गीता जी में बताया है कि जो व्यक्ति तत्वदर्शी संत से संबंधित हो जाता है, उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से फिर वो तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाता है, फिर वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा मरण यानी बुढ़ापे और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न। आज आप जी को बताया, शुरुआत की थी कि सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं हम जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटते फिर फिरते चारों खानी। ये चारों खानी यानी चार प्रकार से जीवों की जो है उत्पत्ति होती है, अंडरज, जेरज, उद्बुद, शब्दज, यानी अंडे से, जेर से, जैसे मां के गर्भ में मनुष्य पशु हैं इनमें, और अपने आप जैसे सुरसी हो जाती है, अपने आप जो उत्पन्न होते हैं। ये चार प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं, इनको चार पार्ट बोलते हैं, चार खानी, चार विभाग। इन चारों विभागों में उत्पन्न प्राणियों की संख्या कितने प्रकार की होती है? 84 लाख प्रकार के शरीरों में कष्ट उठाना पड़ता है, चार खानी में भटकते धक्के खाते। जैसे इन ऋषभदेव जी ने भी नाम लिया, इनकी भी जन्म मृत्यु अभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि यही आगे चलकर बाबा आदम हुए ऋषभदेव जी, और बाबा आदम फिर उसमें स्वर्ग में गए हुए हैं। स्वर्ग के अंदर एक तरफ नरक है, एक तरफ स्वर्ग है, स्वर्ग में विराजमान है और वहां भी दुखी। मुसलमानों वाले पुस्तक में लिखा है, हजरत मोहम्मद जी की जीवनी में, कि बाबा आदम हजरत मोहम्मद ने देखा, वो एक बार हंस रहे थे, एक बार रो रहे थे। हजरत मोहम्मद ने पूछा उस फरिश्ते से, जबराइल से, कि ये कौन व्यक्ति है? जबराइल ने बताया कि बाबा आदम है, ये रो और हंस क्यों रहा है? कि स्वर्ग के अंदर तो इसकी अच्छी संतान है, जो नेक नीति से राह करती वो स्वर्ग में है, और जो निकम्मे थे, भक्ति करी नहीं, मांस मिट्टी खाते थे, वो नरक में पीटे जा रहे हैं, ब्रांड माटी हो रही है। जब ये नरक की तरफ देखता है तो अपने निकम्मी संतान को दुखी होते हुए देखकर रो रहा है, और जब स्वर्ग की तरफ देखता है, अच्छी संतान स्वर्ग के अंदर आनंद से रह रही है, तब वो खुश होता है। तो पुण्य आत्माओं, इस स्वर्ग में भी नो की नो दुर्गति जैसी पृथ्वी पर है, ऐसे दुख और सुख समांतर चल रहे, एक ही स्थान है सतलोक, जहां जाने के बाद जीव की फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। अब आपने ऋषभ देव जी से प्राप्त दीक्षा, मारिची जी की क्या दुर्गति हुई आपने पढ़ लिया, और यही आगे चल के महावीर जैन हुआ, वही आत्मा महावीर जैन कहलाई। अब आपने देखा कि 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता और केवल 80 लाख बार देवता बना। अब उस देवता ने के चाटे गधा कुत्ते भी बन गया। इसलिए परमात्मा बताते हैं कि ये काल की भूल भुलैया है, यथार्थ ज्ञान ना प्राप्त होने से जीव की ऐसे ही दुर्गति रहती है। कई पुण्यात्मा जो होते हैं वो अल्पज होते हैं, कुछ श्रद्धालु ज्यादा होते हैं, वो ये सोचते हैं कि कहते हैं कई बार कि यदि सभी आप वाली साधना कर लेंगे, कबीर जी वाली भक्ति कर लेंगे, सभी सतलोक चले जाएंगे, तो यहाँ पृथ्वी पर कौन रहेगा, तो खाली रह जाएगी पृथ्वी, तो एक कैद है, कैद एक दुख स्थल है, और हम पहले वहीं रहते थे सभी, तो पड़ी रहेगी खाली, ये मेरे ग्रह धक्के खाते हंड और घूम लेगी खाली, अपन के लेना इसका ऊपर, हम तो अपने सतलोक चले जाएंगे, वहां हमारा निज स्थान है। तो ऐसी भ्रमणा पैदा कर रखी है कि यहां कौन रहेगा, इसने के फूकांगे जरा इसी दुरुक्ति होने लग रही जीव की, एक पल में भरोसा नहीं के हो जा, कभी परले हो जा, कभी सूखा पड़ जा, कि भूकंप आकर दुनिया मर जा, कि साइक्लोन आ गया लाखों लोग मर जाते हैं, कभी सर्दी सतावे गर्मी सतावे सैकड़ों बीमारियां, तो यार यहां रहना के शौक है, तो मजबूरी फंस रहे हैं।

0: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।
3: कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
4: यही है आओ जैन धर्म को जाने, ये आओ जैन धर्म को जाने। हम 295 पृष्ठ पर आ गए हैं। हमने ये पढ़ लिया 60 करोड़ बार गधे के भाव शरीर, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुसंग, 20 करोड़ बार क्षत्रिय, 90 लाख बार धोबी और 8 करोड़ बार घोड़ा 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव और 60 लाख बार गर्भपात से मृत्यु को और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त किया। केवल 80 लाख बार तक देवता होया और बाकी ऊपर दुर्गति अलग से हुई। उसके बाद फिर कहा गया राजग्रह में स्थावर नामक ब्राह्मण होया, फिर महेंद्र स्वर्ग में गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, त्रिपृष्ठ नामक नारायण हुआ, फिर सातवें नरक में गया। ये सातवें नरक में और सातवें नरक से महावीर भगवान का जीव कहा गया सिंहगिरी पर, सिंहगिरी पर्वत पर सिंह हुआ, फिर प्रथम नरक में गया। आगे हम ज्यादा ना देख करके यहां देखते हैं, संसार से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, जम्बू द्वीप के छतरपुर नगर में नंदीवर्धन राजा की वीरमती रानी से नंद नामक का पुत्र हुआ। नंद का जीव आगे किस पर्याय में गया, पुष्पोत्तर विमान में देव हुआ, तनंतर उसके बाद वो ही मारिची वाला जीव 24वें तीर्थ कर श्री महावीर भगवान हुए। श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मत चलाए, ओ तेरा गजब, 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, कहते साच कहो तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो, और साच ना पूरा पावते झूठा जगपति आई हो। परमात्मा कहते थे कि मैं सच्ची कहता हूं और मेरी बात पर कोई यकीन विश्वास नहीं करता, और ये झूठों के जो गलत साधना बता रहे हैं ऐसी दुर्गति तुम्हारी हो रही है उन सब के ऊपर सब विश्वास किए बैठे। अब विचार करो मारीची वाले जीव ने, महावीर जैन वाले जीव ने मारीची रूप में जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी से उपदेश लिया था, और ऋषभ देव जी ने क्योंकि और कोई मंत्र था ही नहीं, वेदों अनुसार साधना दी थी, उस ओम नाम के जाप और हठ योग करने से तप करने से तो क्या क्या उपलब्धियां हुई अभी आपने पढ़ा और सुना। उसके बाद महावीर नाम से उत्पन्न हुए और उसके बाद महावीर जी का कोई गुरु नहीं था, इन्होंने स्वयं ही प्रेरित होकर के घर त्याग दिया, अपने आप काफी वर्षों तक निराहार रह करके निवस्त्र रह करके साधना की, और उसके बाद इसने 363 पाखंड मत चलाए। पुण्यात्माओं राजा ऋषभ देव जी से वेदानुसार साधना प्राप्त करके इन्होंने कष्ट भी बहुत उठाए लेकिन 80 लाख बार देवता भी बन गए, क्योंकि पुण्य और पापों का लेखा अलग अलग भोगना पड़ता है। और अब इसने ना तो वेदों अनुसार साधना रखी महावीर के रूप में, और उसने आगे अपने अनुभव से वेदों से हटकर पाखंड मत चला दिए 363 जो वर्तमान के जैनी भाई और ये गुरु लोग उस महावीर जी द्वारा बताए गए पाखंड मत के आधार से साधना कर रहे हैं। इनको तो कुछ भी ना मिल रहा, स्वर्ग में सपने में भी नहीं जा सकते, ये तो सीधे ही नरक और 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये दास का जो उपदेश है अपना बनाया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का विधान बताया, और पुण्यात्मा इसको महसूस करें, गहराई से सोचें और इससे पीछा छुटवाएं और परमात्मा की भक्ति करें। इन्होंने स्वयं लिखा कि उन्होंने 363 पाखंड मत चलाए, पाखंड माने व्यर्थ, वेदों अनुसार साधना करने वाले मारीची जी की भी कितनी दुर्गति हुई लेकिन कुछ राहत अवश्य साथ मिली। फिर उस राहत ने के चाटे देर कुत्ते की योनि भोगी फिर देवता बन गया। तो यहां परमात्मा क्या बताना चाहते हैं, सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वारे, नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनसे कभू ना छूटते, फिर फिरते चारों खानी, चार खानी में गधे कुत्ते सुअर की योनियों में धक्के खाते फटकते, चार खानी में भरमते कभू ना लगते पारे, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकारे। सतगुरु यानी सच्चे गुरु के संपर्क में आने से, यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सत साधना करने से ये सारा बाईपास निकाल दिया। ना तो 84 लाख योनियों में जाना, ना गधे कुत्ते सुअर की शरीरों में धारण करना, और इससे बाईपास निकाल करके या तो मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा यदि भक्ति पूरी ना हुई, और साधना पूरी होगी तो हम सतलोक चले जाएंगे। अब क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसी करूं, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखो न जाए। कितनी प्यारी व्याख्या की है कि ऐसा संत मिल जावे, सतगुरु मिल जावे, जो इन सभी दुर्गतियों से, इस प्रकार के सभी कष्टों से, सभी योनियों से बचा दे। उस सत मंत्र के आधार पे कहते हैं, उस संत की सात समुद्र की मसी करूं इंक, सातों समुद्रों की इंक बना लूं, स्याही बना लूं, और लेखनी यानी कलम बना लूं सारे वृक्षों की, एक वृक्ष के एक टहनी की कितनी कलम बन जा, ढेर लग जा छोटी छोटी कलम। और कहते हैं पूरी पृथ्वी जितना कागज मेरे पास हो, और यदि ऐसे संत के गुण लिखने लगूं, ये सभी समाप्त हो जाए, गुण पूरा ना हो। अब एक गधे का जीवन लिखने लग जाओ, एक दिन में उसकी के दुर्गति होती है, फिर कुत्ते का लिखो, सुअर का लिखो, फिर पुराने का, इतने कष्टों के अरुण से परमात्मा ने हमें बचा दिया। यानी सतगुरु के उपदेश ने, सच्चे गुरु जी के सच्चे मंत्र ने हमारे को कितना बाईपास निकाल दिया। कहते गुरु मानुष कर जानते, ते नर कई है अंधे, होवे दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। ऐसे संत को यदि आप जी केवल मानो ही समझकर ट्रीट करते हैं तो कहते वो मूर्ख व्यक्ति है। पुण्यात्माओं, परमात्मा परमेश्वर स्वयं आए थे, मनुष्य रूप ही है उनका, लेकिन वो तेजो में शरीर अधिक है, उस तेजो में शरीर को सरल करके अलका तेज पुंज का शरीर बना करके वो एज इट इज प्रगट हुए थे, छोटे से शिशु रूप में, धीरे धीरे लीला करते हुए बड़े हुए लीला की। तो ये ज्ञान प्रचार किया करते, सुख यही दिया करते जो आज परमात्मा आप जी को दे रहे हैं, वही कबीर जी इस दास के माध्यम से। तो उस समय हम परमात्मा से इसलिए दूर रहे, उनके संग नहीं जा सके, क्योंकि हम उन अज्ञानी अनाड़ी ऋषियों के द्वारा भ्रमित ज्ञान के आधार से हम परमात्मा को निराकार मानते रहे। इसलिए यदि परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी, कबीर जी कह रहे हैं मेरा नाम कबीर, लेकिन ये बातें किसी के गले उतरी नहीं कि परमात्मा तो निराकार होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमने परमेश्वर को परमेश्वर माना नहीं, ओनली एक आदमी मान के और ज्ञानी मान के कि विद्वान है और कुछ सिद्धियां रखता है, इसलिए हम परमात्मा के साथ चिपके रहे, हमने उनको परमात्मा नहीं माना। और कबीर जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। तो गुरुदेव को, वो तो भगवान स्वयं आए थे और इस दास को भेज दिया अपना आप जी को समझाने के लिए, मुझ दास को भी अपनी उन्होंने पावर दी है मालिक ने ही इस दास को, और वही सब परमात्मा ही कर रहे हैं। कबीर जी की शक्ति ही आप जी का सुख, आप जी को सुख दे रही है और साथ में आपको दुखों का निवारण कर रहे हैं और साथ में ये ज्ञान वही बता रहे हैं उन्हीं की वाणी से। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि यदि आपने गुरु जी को परमात्मा के तुल्य नहीं माना तो फिर भी काम कच्चा रह जाएगा, आपकी साधना विफल हो जाएगी। एक नियम है, गुरु मानुष कर जानते वो नरकई है अंधे। अब गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, क्योंकि सतगुरु इसलिए कहना पड़ा कि नकली गुरु गणे, इसलिए सतगुरु शब्द लगाना पड़ा। और वास्तव में गुरु शब्द पर्याप्त है, जैसे आध्यात्मिक गुरु संत होते हैं, लेकिन वो संत नकली हैं, उनका ज्ञान कंप्लीट है नहीं, जिस कारण से अब सतगुरु शब्द लगा दिया। तो यहां लिखा है कि जो आप जी को सतगुरु मिल गए उनको गुरु कहो चाहे सतगुरु कहो, वो तो प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण है, प्रत्येक संज्ञा में, प्रत्येक उपमा में। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते हैं, यदि गुरु जी को तुम मानस मानते हो, सिंपल मैन मानते हो, ते नर कहिए अंध, वो ज्ञानहीन है, ज्ञान नेत्रहीन अंधे हैं, वह दुखी संसार में आ गए फिर काल के फंद, काल के बंधन। अब देखा अपने महावीर जैन की दुर्गति हुई, कहते ये संकट फेर रहेंगे जब सतगुरु मिल गए, सतगुरु को आपने एज ए गॉड रिस्पेक्ट नहीं किया, कंसीडर नहीं किया। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और ओवे दुखी संसार में अग्ग काल के फंद। जैसे एक गणित का प्रश्न होता है, एक गणित के अंदर एक प्रश्न ब्याज का एक चैप्टर होता है, उसमें सपोज करना होता, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, जबकि वास्तविक मूलधन करोड़ों रुपए में होता है, उस करोड़ों रुपए के मूलधन को प्राप्त करने के लिए सपोज करना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और जब तक हम 100 रुपए मूलधन नहीं मानेंगे, भले ही वो करोड़ों रुपए की तुलना में एक छोटी राशि है, तो हमारा वो प्रश्न हल नहीं हो सकता। इसलिए आप जी ने गुरु जी को मान लो, गुरु जी भगवान, गुरु जी गॉड हैं हमारे, और फिर उनको जैसे हम परमात्मा के सामने जाते हैं, परमात्मा से जाएंगे हम, जैसे वह भगवान आ जाते हैं, यदि आप ऐसा ही व्यवहार करोगे ऐसे वैसे, तो परमात्मा नाराज होंगे। तो परमात्मा नाराज ना होना चाहिए, परमात्मा के नाराज होने के कारण तो हम यहां कष्ट उठा रहे हैं। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जानू किसी बात से मारा टूट न जावे ने। इतना भय लगे परमात्मा गुरु जी के दरबार में आकर परमात्मा तुल माने, और ऐसे कोई बात, ऐसा मन में कोई विचार, कोई ऐसे अवगुण ना हो जा जिससे गुरु जी का और आपका प्रेम भंग हो जा, यानी जो श्रद्धा आपकी है उसमें कोई फर्क पड़ जावे, वो नहीं पड़ना चाहिए, फिर व्यर्थ हो जाएगा आपका जीवन। तो इस प्रकार हमने गुरु जी को परमात्मा मान के, क्योंकि जाना है भगवान के दरबार में, और वहां पर सबसे पहले इस दास के रूप में आपको प्रभु मिलेगा, परमेश्वर मिलेंगे, त्रिकुटी पर जाकर तुम्हारी वहां छटनी होएगी। यहां आप जी ने जैसी श्रद्धा इस दास के प्रति बनाई है, जैसे पौधे का, जैसे गेहूं का पौधा पक जाता है, बाली आ जाए ऊपर, अपने आप पता लग जाता है कि ये गेहूं है, और उसके अंदर एक कोबाड़ भी होता है, गेहूं जैसा डंगा खरपतवार, एज इट इज सेम टू सेम प्लांट होता है, वो दोनों एक जैसे पौधे होते हैं, लेकिन जब वो परिपक्व हो जाते हैं और दोनों के ऊपर वो बाली आ जाती है, तब उनका पता लगता है कि वो खरपतवार है, यो गेहूं है। ऐसे ही जिन्होंने यहां गुरु जी को परमात्मा तुल जानकर और निष्कपट भाव से, सच्ची श्रद्धा से, साधना सेवा भक्ति कर रखी है, तो त्रिकुटी बजाते ऐसे बाल लकड़ा होगी थर अपने आप, और पता लग जाएगा कि यू खरा हरी यू खोटा, तो उस खराब पौध देने के निकाल के किसान बाहर फेंक देता, फिर वो आग में फूंक दिया जाता है, व्यर्थ होता है गधे खाओं से। और गेहूं को अपने ला करके कोठिया में डाल लेता है। तो ऐसे ही आप जी ने जैसे भाव से, जैसी श्रद्धा, जैसी भक्ति सच्चे दिल से यहां की है, तो वहां आपका फल आपके सिर पर लिखा पाओगा। और वहां फिर आपकी कैसी गतिविधि होगी, आपकी कैसी वहां भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, तो वहां उसी का, वहां एक समझो परीक्षा एग्जाम है आपका। और वहां भी आपने ऐसा ही मन में दोष कपट रखा जैसा यहां रख रहे हो वैसा ही वहां होगा, जैसा दिन में करते हो वैसा स्वप्न आओगा। अब जैसे आप जी को स्वप्न आते हैं, तो जैसा व्यवहार आप यहां इस दास के साथ कर रहे हो वैसा स्वप्न में आएगा। तो इसी प्रकार वहां भी एक स्वप्न होगा, आप होगे परमात्मा होंगे इस दास के रूप में। तो वहां अगर आपने, आपकी रिहर्सल में कमी रहेगी, आपने ट्रेनिंग ठीक ना करी, तो वहां से रिजेक्ट कर दिए जाओगे। फिर वो व्यक्ति कई हजार युगों तक मनुष्य जीवन भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो वहां से गिरे हुए इंसान फिर बहुत देर से संभलते, क्योंकि इतना दिन और संग रहे और इतना ज्ञान सुना, फिर बकवाद भर ली। तो इस प्रकार पुण्यात्मा आप जी ने बहुत उत्तम स्थान पर जाना है, और उसके लिए उत्तम ही कर्म आपने करने होंगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिए मिलाए। गुरु जी का कितना महत्व बता रहे हैं परमात्मा कबीर जी। जब तक आप जी की इतनी श्रद्धा गुरु में नहीं होगी, और जैसी श्रद्धा गुरु जी में है उतनी ही परमात्मा में काउंट होगी, माननी जाएगी। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं वहां, मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप, तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद मिलाए, अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा, ये नियम है। और तुम चरण छुओ औरा के, किसी सासू के की तो ससुरे के की तो, और बड्डे छोटे के सपने में भी ना छूने चाहिए अपन। भाव ये नहीं है कि हमने किसी का सत्कार नहीं करना है, या किसी को प्यार नहीं देना है, या शिष्टाचार खत्म कर देना है, नहीं। वो शिष्टाचार के तरीके गलत कर लिया हमने, और पुत्र वधु सासू के चरण छुया करे, चरण दबेगी नु, भगवान ने कहे बेटी बूढ़ सुहागण हो, दूध दान आओ कुत्ता फड़ियो। अब वो छोटी मोटी को पूर्व जन्म की को कमाई हो, अब वो उतनी सौंप दी, आप खाली खोखा होगी। हम चरण इसलिए छुया करते कि ये खुश होकर अपना आशीर्वाद दे दे, कुछ लाभ मिले। और चरण छोड़ते कौन सा बुढ़े के पैरों का दर्द ठीक हो है। अगर मान ले किसी बुजुर्ग के, चाहे बड़े के चाहे छोटे के, आपसे छोटे बाण बेटी भाई जैसे बहने हैं, आपसे बड़ी सास का की पिंडी दुखे हैं, तो उनके पैर दबाओ खूब अच्छी तरह। एज है मरीज जान के, आवश्यकता समझ गए, वो बेसक सेवा करो, मालिश करो, सिर में करो, पैरा में करो, तलव्या में करो, है किसी तरह सेवा करो, पां दो गर्म पानी ते, जब को ठंड लाग रही होता है सेवा कर दो। लेकिन एक औपचारिक जो चरण छूने, ये भक्ति मार्ग में बाधक है, ये नहीं करना। तो वहां गुरु गोविंद दोनों खड़े, और किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद मिलाए, तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न होगा। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। उन आत्माओं इसको एक एग्जांपल द्वारा समझाते हैं। जैसे आप जी के पुण्य जब तक चल रहे हैं पूर्व जन्म के, तो तब तक आपको कोई आपत्ति नहीं, संतान भी अच्छी है, पुत्र पुत्री होगी, उनकी शादी ब्याह भी कर दिए, उनको भी संतान होगी भगवान उनके संस्कार वश। और जब तक आपके पुण्य हैं तो आप जी को कोई आपत्ति आई नहीं। जब आपके पुण्य अक्षीण हो जाएंगे उसके बाद आपके पापों का दौर शुरू होगा, तो पापों का दौर जब शुरू होगा तो कष्ट पर कष्ट आएंगे। जो व्यक्ति घने दुखी हो जाते हैं ना, वो क्या कहा करें कि हमारा राम रुस गया, हमारा राम रूठ गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया, इसलिए हम पापत्ति आएगी। अब राम रुस गया, पुण्य अक्षीण हो गए, पाप शुरू हो गए, तो कहते हैं कबीर हरी जय रूठ जा, राम रुस गया आपका, गुरु की शरण में जावे, कबीर हरी जय रूठ जा, गुरु की शरण में जाए, कहे कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। आपका राम रुस गया, दुख हो गया, आपत्ति आई, तो संत की यानी परम संत की शरण में जावे गुरु। अब गुरु कहो चाहे सदगुरु कहो, क्योंकि आप समझ गए इस बात को कि झूठे जो नकली हैं वो गुरु भी नहीं है लेकिन गुरु कहलाते, इसलिए सतगुरु कहा। लेकिन अब सतगुरु कहो चाहे गुरु कहो, आपको समझ में आ गया कि जो पूरे संत हैं उन्हीं के विषय बता। अब परमात्मा क्या बताते हैं, पर्वत पर्वत में फेरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले है जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहां कहां पर्वतों पर गुफाओं में बर्म्या भटक्या, और संत मिले भगवान जैसे, संत मिल गए, परम परम संत मिल गए, वो सुख दिए जो भगवान दिया करता है। जैसे आप जी एक तरफ तो हैंड पंप है जिसमें से जल निकलता है मीठा, और एक तरफ आपके घड़े में जल है। जब तक आपके घड़े में जल है और आप कहीं घर पे हो चाहे कहीं मजदूरी कर रहे हो दुकान पे खेत में कहीं पर भी हो, तो आपको कोई आपत्ति नहीं, प्यास लगी घट घट पानी पी लिया। और जब मटके का जल समाप्त हो गया घड़े का, फिर आपत्ति आई, समस्या आ गई, प्यासे मर गए, फिर चले कहां हैंड पंप के पास, हैंड पंप पर गए और वहां हैंड पंप की सेवा की और फिर मटका भर लिया। सेवा में पूजा यानी जो उसका विधि विधान है वो हलाया, उसको डंडा फेरा उसका हैंड पंप का हैंडल और जल भर लिया, मटका भर के आ गए। तो आप जी के पुण्य क्षीण हो गए, आपका मटका खाली हो गया। कहां जाइए, संत के पास, गुरु जी के पास, और जैसे गुरु जी साधना सेवा बताएं वो हैंडल लाइए यानी सेवा कीजिए, पूजा कीजिए, साधना कीजिए, फिर मटका भर जाएगा। और यदि कहते गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने आत्मा एक तरफ हैंडपंप है और एक तरफ एक मटके में आपके घड़ा बढ़ा दे रहा है, और एक तरफ परमात्मा खड़े हैं, एक तरफ गुरु जी खड़े हैं। आपसे परमात्मा प्रसन्न कर रहे हैं कि तुम किसको चाहोगे, हैंडपंप को चाहेंगे हम, बुद्धिमान होगा तो। कोई नहीं होगा तो मटके का जल चाहिए या हैंडपंप, तो हैंडपंप में तो हजार मटके भर ले। और हैंडपंप अब जैसे परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के रूठ जा, रूठते गुरु की शरण में जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि ना करे सहाय। आप जी ने हैंडपंप की ठीक मेंटेनेंस करी नहीं, हैंडलिंग ठीक करी नहीं, हैंडपंप खराब हो कर दिया, एंड पंप खराब हो गया था, गुरु जी रूठ गए। अब वो जल नहीं मिलेगा, वो जल मिलेगा नहीं जो हैंड पंप से मिलना था। जब आपका राम रूठा, गुरु जी के पास गए, आपको विधि बताई, साधना दी, अपना आशीर्वाद से कुछ लाभ दिया, और यदि आप जी ने गुरु जी को रुष्ट कर लिया, एंड पंप ही खराब कर दिया, तो फिर क्या मिलेगा।

उतर गया कि आदमी ठीक होना या बहन बेटी भक्ति नहीं कर रही है या बकवाद करते हैं, ड्रामाबाजी करें, तो वो दिल से उतर गए तो उनका नाम कट गया। और कहते उनको काल घसीट ही राख सके नहीं कोई। तो यहां क्या बताए है कि गुरु के रूठते हरी की शरण में जा, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हर नहीं करे साए। एंड पंप खराब कर लिया तो आपका जो है जल ने लाभ देना बंद कर दिया, जल मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रकार परमात्मा बताते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे, ओए दुखी संसार में फिर अग काल के फंदे। यहां भी दुखी होंगे वो व्यक्ति जिस किसी पुण्यात्मा ने यहां पर इस दास के साथ रहकर भक्ति करी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष, और फिर अपनी नालायकी ते को गलती करके यहां से निकल गया और चला गया कहीं और धक्के खा भैया घर पे रहता है। तो उसको जब तक उसके पुण्य इस 3 साल में किए हुए सत साधना और भक्ति के जो पुण्य है वो जब तक उसके चलेंगे, वो मटका भरा हुआ है, भर लिया उसने और अग एंड पंप खराब कर दिया। जब तक वो घड़ा पानी का चल रहा है, रोजाना 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास घट ही रहे, उसमें प्रवेश नहीं हो रहा, आउटपुट ही है, इनपुट नहीं है उसके अंदर, तो एक दिन वो अक्षीण होंगे। हो सकते हैं वह 2 वर्ष में हो 4 वर्ष में हो 5 वर्ष में हो 10 वर्ष में, फिर उनकी वही दुर्गति फिर शुरू हो जाएगी क्योंकि हैंडपंप खराब कर दिया। और जो हो गए गुरुद्रोही, ठीक है ऐसे व्यक्ति है नया फिर दुखी सुखी बान लग रहे हैं, 1 साल में आया कोई 4 साल में आए धक्के खाकर बिरान मैटी होली, दोबारा फिर आ रहे हैं, आना चाहिए कोई बात नहीं, 1-2 बार हम खुरकावा धमकावांगे लेकिन हमने तो उतने अच्छे लगते हो अपने बच्चों की तरह। और जो हो जाते हैं गुरुद्रोही उसको तो कदे असंग जन्म भी भगवान मनुष्य जन्म नहीं देगा, ठीक है अब तक वो पुण्य है उसके चलते रहेंगे, जितने 1 वर्ष चलेंगे 10 वर्ष चलेंगे 20 वर्ष चलेंगे आगे वह दुर्गति होगी, इस प्राणी की सोची भी नहीं जा सकती। तो पुण्यात्मा जय इब कै सतगुरु मिले, जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख अखोरो, चरण ऊपर शीस धरूं हूं कहो जो कहनी हो। अब क्या बताते हैं ये जो वाणी हम बोलते प्रतिदिन उनका अब निष्कर्ष समझ में आएगा आपके। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं तुम जैसे हमको नहीं। अब जब सही ज्ञान आपको हो जाएगा उससे मैं समझ में आओगी कि हे परमात्मा हे गुरु जी आप हमसे भूलियो मत, आपके पास से लाखों लोग आ जाएं क्योंकि सब दुखी आत्माएं आकर या सुख ग्रहण करती हैं तो वो तो आपको चाहेंगी, आप हमने ना भूलिए क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे आत्माएं भगत, लेकिन मुझ भगत को आप जैसे सतगुरु नहीं मिलेंगे इस पृथ्वी पे। जय इब कै सतगुरु मिले सतगुरु, नकले गुरु तो मेरे मिल लिया हमने, सब दुख आखों रो। ये बातें हैं कोई आत्मा जो दूसरे पंथों के पास संतों के पास 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष बर्बाद करके रोते हैं, यहां पर उनकी आंखों के आंसू नहीं सूखते, जब यू ज्ञान समझ में आ जाता है, रात को भी कहते बैठ कर रोते हमारा क्या हाल हो गया, ये कहां गया, इतना जीवन बर्बाद कर दिया हमें, अरे परमात्मा बड़ी दया हुई अब सतगुरु का मार्ग मिल गया। जय इब कै सतगुरु मिले सब दुख आंखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं हूं कहूं जो कहनी हो। कबीर साईं मिलेंगे वो पूछेंगे कुशलात, आज अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। अब जो दूसरे पंथों से आते हैं जब उनको पता चल जाता है, क्योंकि इस ज्ञान पुस्तक हमने छापी है ज्ञान गंगा, उसको पढ़कर अब दूसरे पंथों की पुण्यात्माएं रो रो कर आ रही हैं, भटक रही हैं और बताती हैं कि इतने दिन मैंने वहां बर्बाद कर दिए, कुछ नहीं मिला, ये नुकसान हो गया, इतना जीवन बर्बाद हो गया। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुछ लाते,
आद अंत की सब कहूं।

की बात। और फिर कहते हैं गुरु जी आप ना भूलियो हमें, और आप भूल गए फिर कहां जाएंगे, हमें कोई ठिकाना नहीं इस पृथ्वी पर। हम जैसे तो आप जी को बहुत अच्छी आत्माएं और भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन आप जैसे गुरुदेव हमें नहीं मिल पाओगे।

आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे 7 दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश किते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहता है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहते हो तो इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347।

0: 403-454-0347 रासा प्लैटियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: कैलगरी इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसी भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसे भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह दी जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: हो जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले, तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316 स्थाई एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर

कैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।
2: अज जेठ जुड़न दा लोड़िए हर जे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलने वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी या होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करने की जानकारी लेने लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: सा सेवा कीती

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 to 8 तक ते शाम 5 to 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो डब्ल्यू

ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। आसा महला पहला वार श्लोकां नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराज की तुही श्लोक महला पहला। बलहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार

0: जग तुतर करिया तुतर करिया।
1: श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझ आखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिप सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर्ज मैं सो कच न कच महला पहला।
0: ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣਿਆ ਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਪੁਜੈ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ।

सच्चा साहेब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू जे तिस मेले सता तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन कह दे सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया।

0: तन तन वणजारा वणज है गुर शाह सवासे जन नानक गुर तिली पाया जिन तुर लीलाट दिखासे लीलाट दिखासे।
1: श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाइए पढ़ पढ़ गड्डी खात पढ़िए जिते बरस बरस पढ़िए जिते मास पढ़िए।

0: मोर कान में दातली खाक जे मिले तमस्त तलाई है पूरा लालच छटी है होए एक मार अलक प्याई है बालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखे आदा तूड़ तेरा दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
1: ओड़ी दान मेहडा तली खाक जे मिले ता मस्त कलाई है कूड़ा लाल छटिया हो एक मन अलग ते आई है पालते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है जे हो वे पूर्व लिखा ता धूड़ती ना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है।

0: सच काल कूड़ वर्त्या, कल कलक बेताल बियो बीज पत लै गए, अब क्यों उगवै दाजे, इक होए ता उगवै रुति हुरत होए, नानक पाहे बाहरा गोरे रंग न सोए। पै विच खुंभ चढ़ाई है सरम पाहु तन होए, नानक भगती जे रपै कूड़े सोए न कोई महला पहला।
1: लब पाप तुए राजा मेहता कूड़ हुआ सिखदार, काम नेप सत पुछिए बह बह करे विचार, अंधी रहियत ज्ञान भी हुनी पाहे परे मुर्दा।

0: जिनके लिखे पद पवे
1: चंगे से ओड़ी तोर कर्म जिना को तुद पाया
0: तातिनी खसमत आया है न जब

जाको मन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा।

0: गोर रामदास को।
1: गुरु समरथ गह करिया त्रोबुद्ध सुमत स्मरण को, पुन त्रम तुजा फैरंत सदा अग पुंजित रंग।

सागल कटा मह तागा नाम यदक पीवत जन नानक त्याग सब अनुरागा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा जिस कौ बिसरे प्राण पत दाता सोई गन हो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो अमै सरोवर पागा। रुत सरद अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलो गुणतास जियो असुन आओ पिरा सातन चूर मुई नानक सोई दिन से सुहावड़ा जित प्रभु आवे चित जित दिन विसरै पार ब्रह्म फिट पलेरी रुत सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी

असन प्रेमियो मरा क्यों मिलिए हर जाए मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मिलावे माए संत सहाय प्रेम के हाँ तिन के लागा पाए वेण प्रभ क्यों सुख पाइए दूजी नाही जाए जिनी चाखिया प्रेम रास

लहो प्रभु लड़ लाए, जो हर कंत मिलाईया, से विछोड़े कतहे ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। असो सुखी वसंदिया, जिना माया हर राए। असो सुखी वसंदिया, जिना माया हर राए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे

0: पढ़
1: पुस्तक संध्या वादन सिल पूज बगल सुमादन मुख झूठ बैपुखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक ललाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चो करमं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना छड दुनिया अंदर रावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म के मन भावदे।

संत साजन पए सर से पूरे पुरते सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद पूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे।

प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया, प्राण के बचैया, दूध पूत के दिवैया।

0: मन उतारे तोय महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक, अखी सुतक वेखना पर त्रिया पर धन रूप।

0: ले हो प्रभु लाड लाए, जो हर कंत मिलाईया, से बिछुड़ कतहे ना जाए। प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। असो सुखी वसंदिया, जिना माया हर राए। असो सुखी वसंदिया, जिना माया हर राए। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। असुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आन मिलावे माए।
1: कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM। धार्मिक प्रोग्रामां दा आनंद मानने लई आज ही अपने घरां ते कारां दी रेडियो नूं पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो। पंजाबी रेडियो।

हर एक बंदा जाने बुरियां नाल चंगियाई करनी धन गुरु नानक जाने। गुरु नानक महाराज जी ने सरबत दा भला मंगया, ऐ नहीं आखिया कि मेरे परिवार जा रिश्तेदार जा मेरी कौम दा भला करी। यही उपदेश गुरु नानक महाराज जी ने गुरसिखां दी झोली पाया।

मर्दानी दा बैराग ते तकिया नहीं जांदा। बाबा अपना आप बेची जांदा है गरीबां लई। बालिया मैं ते सब कुछ दसन लगा है, ये कोई बालक नहीं, ये ते सारी सृष्टि दा मालक गुरु नानक है। बाले ने कहा, ना मर्दानिया इंज ना करना, तेनू गुरु नानक दे बचन याद नहीं। बालिया मैनू गुरु नानक दे बचन भी याद नहीं, पर भैन नानकी दे बचन भी याद आ गए ने। तेनू सुल्तानपुर की गल दसा, एक बार सतगुरु एकांत विच सिमरन विच बैठे सन। किन्ने दिन सतगुरां ने नेत्र नहीं खोले ते मैं उठ के घर नूं आ गया। भैन नानकी मेरे नाल बहुत नाराज होई, मरदानिया तू नानक नूं कल्ला ना छड़िया कर। सतसंगियो बेशक खुद निरंकार है, पर भैन ते भरा दा प्यार भी है ना, तू कला ना छड़िया कर नानक नूं। तू मेरे वीर दे नाल हुंदा है ना, ते मैनू कोई फिक्र नहीं हुंदा भई मेरे वीर नाल मर्दाना भी है। तैनू किसे चीज दी लोड़ होवे तू मेरे कोल आ के लै जाया कर। बोलदिया बोलदिया मर्दाना किसे बैराग विच पार आया, गला रुक गया है। बालिया हुण मैं घर जावांगा, नानकी पुछेगी मेरा वीर किथे है। रुकदे नहीं अंजू, बाले क्या मर्दानिया गुरु नानक सारी सृष्टि नूं सांभण वाला है, इहदे कौतक न्यारे नहीं। इन्ने नूं मौलवी बांह तो पकड़ के लै गया है। जदों अपने घर गया ना, घरवाली देख के खुश हो गई। चंगा कीता जे, सानू गुलाम दी लोड़ सी, पर एक गल दसो, ऐडा कोमल जिहा गुलाम ये किहड़ा काम करेगा। हुण सतगुरु बोले, मुल खरीदे लाला गोला, तुहाडा गुलाम हां, तुसी जेड़ा काम कहोगे ओही काम करांगा। मौलवी ने आख्या, इंज करया कर, सवेरे सवेरे खुए तो पानी भर के लियाया कर। अज गुरु महाराज अमृत वेले उठे, गागर चुकी खुए ते पानी लैण वास्ते पुज गए ने। इंज लगदा है जिवें खुए ते खलोते जल देवते नाल कुछ गल्लां करदे होण। इस धरती दे उपर बहुत जुल्म हो रहा है, देख अमीर किवें गरीब नूं बेची जांदा है। तू भी मेरा साथ दे, आपां रल के सरबत दा भला करिए। खाली गागर लै के वापस मुड़ आए ने मौलवी जी, खुए विच ते पानी ही नहीं है। मौलवी सुन के हैरान, खुए विच पानी नहीं, भई ये किवें हो गया। जदों शाम दा वक्त होया ना, मौलवी ने गुरु जी नूं किसे होर खुए तो पानी लैण भेजिया। इन्ने नूं इस नगरी विच रौला पै गया, सारे खुएयां विच पानी मुक गया है, ते सारी नगरी दे लोग इकट्ठे हो के मौलवी दे घर आ गए। पहला पानी जियो है, जीवन वास्ते पानी जरूरी है। जीव जंतु इंसान ते एक पासे, पानी तो बगैर ते दरख्त भी सुक जांदे ने। सारे लोग इकट्ठे हो के विचारां कर रहे ने, मौलवी जी तुसी दसो अल्लाह ताला साडे ते नाराज हो गया है, इंज लगदा है जिवें सारयां नूं इकट्ठिया ही मारेगा।
ते एक पठान ने खलो के आख्या, अज दिन दा तुसी नवा गुलाम रखिया है ना, उदों दा ही खूहां च पानी सुकिया है। सारे पिंड विच हाहाकार मची, हर कोई उदास है, पर जेड़ा तू गुलाम रखिया है उहदे चेहरे ते लाली, उहनूं फिकर कोई नहीं। मैं हुणे आंदा तकिया सी, जेड़ा उस वेले दा कौतक है ना, कलगीधर चमत्कार दे लखारी ने इंज लिखिया है, करो दर्शन। शाम दा वक्त है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, आओ सामने गुरु नानक महाराज आ रहे ने। आले दुआले अंधेरा, पर गुरु नानक महाराज जी दे दुआले चानना है, प्रकाश है।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवे नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stamp

0: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित कीते जाते ने जिनाच स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह दी जानकारी लेन लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हॉल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983
3: कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह की इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस का पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: अरबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लेने ले कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी ले साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो bobby.dodd@403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East Calgary।

चरण कमल जाका मन रागियो अमे सरोवर पागा। जिस कौ बिसरै प्राण पत दाता,

आलस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यो मन लागा रहाओ। जह जह पेखाओ तह नारायण सगल घटा मह तागा।

वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप गुरु की साजी नवाजी, गुरु स्वरूप गुरु खालसा सतसंग दी अज दे पावन पवित्र फरमान विच सतगुरु पातशाह ने एक अहम नुक्ते का जिक्र किया है। आपां आम करके जिहदे कोल चार पैसे होण, जिहदी आग्या उहदे कहने विच होवे, उहनूं आम करके आपां कहिंदे वी फलाना बड़ा भागां वाला है, उहदे धी पुत उहदी आग्या च ने, उहनूं वाहिगुरू ने बड़ा कुछ दित्ता है, लेकिन भागां वाला कौन है? उहदा जिक्र अज दे पावन पवित्र फरमान विच गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ने कीता है। पैसियां नाल कोई भागां वाला नहीं, केवल ते केवल बच्चों के आग्या घर होने करके कोई भागां वाला नहीं। असली भागां वाला कौन है? हजूर जिवें जिक्र करनगे सरवण करिए, मन की एकाग्रता लई यतन करो, तो बोलो सत।

ना किता मार देंगा, ना चाहद्या होड़ा माड़ा जहा मारिया। दसा दिन तो बाद कह लगा मेरा जख्म वे, कह लगा वह तो लभदा नहीं। शेर कहिंदा पेड़ा कुहाड़े का जख्म सी ना वो तो मिड़ गया, पर जेड़ा तेरी घरवाली ने मैनू कुत्ता बिल्ला कहा सी ना वो जख्म नहीं मिड़िया। ये तुम सारे जने अपने जीवन वेख्या, जे किसी ने ना कहा, जे आपां नू जे किसी ने माड़ा लफ्ज कहा ना, आपां बचपन तो जवानी में ते बढ़ा पाया पर वो सानू माड़ा लफ्ज भुलदा नहीं, ते जे किसी ने चंगी गल आखी ते आपां नू वह भी नहीं भुलदा। इस करके शरीरक पाप तो हुंदा पे किसी नाल लड़ाई झगड़ा करना, वाचक पाप तो भाव हुंदा पे किसी नू बुरा बोलना, लेकिन एक पाप आपां भावें पैरां ते पानी ना पैण दीए, भावें आपां आखिए जी मैं तां कदे कीता नहीं, लेकिन एक पाप अपने तो हुंदा है पे कोई सुखी होवे ना ते उहने चिट्टे कपड़े पाउण ते आपां कहिंदे कल भुखे मरदे सन हुण किवें चमकिया फिरदा है, आख्या नहीं। पर फुरना आया साडे बजुर्गों के धर्म ग्रंथों के मुताबिक गुरमुखो यह भी पाप च है। ये किसी नूं चंगा वेखा उहदे प्रति नफरत आउणी भी कल भुखा मरदा सी यह भी एक पाप है। इस करके बेनती करनी कि पातशाह हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शण आ रहे, असी पैर पैर ते गलतियां करदे ते सानू बख्श दे। मेरे पातशाह कहिंदे जिसको बिसरे प्राण पा दाता सोई गनो अभागा, जिन्हू वाहगुरु भुल गया ना उन्हू समझो भी ये माड़े भागा वाला है। वो तो ग्रंथियां दी गल्लां ने ना, मेरी अपनी जाति राय के मुताबिक हो सकता मैं गलत होवां। जेड़े घर दे विच सवेरे बाथरूम विच बाल्टी नहीं खड़कदी उह कर्ममंद भागा जे, जेड़े घर विच सवेरे बाथरूम विच कोई भांडा नहीं ना खड़कदा पे कोई नहाउंदा नहीं वो माड़े भागा वाला है। जिथे सवेरे लोकी अमृत वेले जागदे ने ना वो कर भागा वाला है, ते जिथे आवाज नहीं आउंदी ते दीवे बुझे ने उहनां दे कर दीवा नहीं बुझा उहनां दे कर्म बुझे होए ने वो माड़े भागा वाले ने। और ये इन्ना इंपोर्टेंट विशा है जिहड़ी मैं गल कर रहा, यह इन्ना जरूरी विशा है। जिदन तरन तारण साहब की नींह रखी ना, ते नगर दे इथों दी अमृतसर साहब दे प्रेमी माई भाई वड्डे छोटे गए, उन्हां च माता गंगा जी भी नाल गए, बाकी बीबियां तां वन सवन्ने गहने पाए लेकिन माता गंगा ने गहना पाए कोई नहीं, गंगा को उन्हां ने पाए नहीं। इतिहास शाम नूं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जदों उत्थों तुरन लगे ना ते कहण लगे स्वामी जी मैं निक्की जी गल करां, कहण लगे गंगा निक्की कानूं करनी तूं मेरी अरदंगी है वड्डी गल कर। कहिंदी जे मैं कहिंदी संकोचदी पर वेखो नगर दीआं बीबियां ते उहनां दे वन सुहने सोहणे कपड़े उहनां कोल वन सुहने गहणे ते मैं तुहाडी अरदंगी ते मैनूं सारे माता माता कहिंदे मेरे कोल चंगा गहणा ही कोई नहीं, मेरे कोल वधी सादे जे कपड़े मैं पाए ने। नमस्कार मां गंगा नूं ते नमस्कार गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह नूं। कहण लगे गंगा जेड़े उन्हां दे गहने ने ना तू मेरी अरदंगी है। जदों बीबियां ने चढ़ाई कीती जदों मड़ियां नूं जाण लगे उन्हां दे गहने उन्हां ने ला लैणे, लफ्ज करड़ा ते सच्चा मैं कहण लगा करड़ा ते सच्चा है, मां सीरियस है। कन्ना जवाड़िया ने तिया तीन ने ते सनेहा मिलिया पे रात दी बेबे बड़ी औखी पता नहीं दिन चढ़द्या नूं चढ़ाई ना कर जाए, ते कुड़ियां इस करके दौड़दियां पे सज्जे कन्न वाली वाड़ी मेरी ते खब्बे वाली भैण दी, मां दी मौत दी चिंता नहीं केवल ते केवल कन्ना दीआं वाड़ियां दी चिंता आपां नूं, आपां इन्ने खुद गर्ज हां। धन गुरु अर्जन दे सच्चे पातशाह कहण लगे गंगा उन्हां दे गहने लोकी ला लैंदे ने, मैं तेनू इहो जिहा गहना देंगा पलोक विच वी तेरे नाल जाएगा। ते माता गंगा जी ने एकदम उपर चाकिया कहण लगे

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी उर्दू मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचना और कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहब जी के असीम कृपा से आज हमें ये यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें ये मालूम हुआ हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम इस गंदे लोक में कैसे फंस गए हैं, अब हम यहां से कैसे छूट सकते हैं, हमारा मूल ठिकाना, मूल स्थान कहां पर है। अब हमें ये भी पता चल रहा है कि हम कोई भी प्राणी, चाहे कितना ही वृद्ध है, कितना ही रोगी है, कोढ़ी है, कितना ही मानसिक परेशान है, कितना ही उसको घाटा होता है, कोई भी व्यक्ति मृत्यु नहीं चाहता। और ये पता होते हुए कि मृत्यु डेफिनेट है और फिर भी हम बिल्कुल मरना नहीं चाहते, चाहे कितने वृद्ध हो जावां, कितना ही हम दुखी हो जाएं। और ये बात बिल्कुल जायज भी है भी, क्यों तो सारा जीवन हम लगे रहते हैं अपने परिवार पोषण के लिए, अपना एक रैन बसेरा बनाने के लिए, और वो पूरा नहीं हो पाता, इतने मृत्यु होने की बारी आ जाती है। यू क्या सांग हुआ, क्या व्यवस्था हुई? एक विशेष विचारणीय विषय है कि इंसान सारा जीवन अपने परिवार पोषण में मकान बनाने और तथा कुछ आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने में सारा जीवन लगा देता है। बच्चों की शादी विवाह करके न्यू सोचा है कि अब मुझे कुछ राहत मिलेगी, इतने बुढ़ापा दस्तक दे देता आकर के लिए मैं भी आ गए भोले त्यार, कदे आंख बनवानी, कितने जाड़ पड़वानी, कितने सिर में दर्द, कितने कड़े दुख है कमर में दर्द, ऐसी बिरान माटी हो इस जीव की। अब हमारे को दूर से दिखाई देने लग गया क्योंकि हमारा अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया परमात्मा ने, हमारे को आज वो वृद्ध अवस्था खड़ी दिखाई देती है। इसका विकल्प क्या है कि परमात्मा के चरणों में लगा रहने से, सच्ची श्रद्धा से भक्ति करने से, वो दुख में समय हमारा आसानी से व्यतीत हो जाएगा। परमात्मा का सहयोग हमारे साथ रहेगा तो हमें बहुत हल्का बनेगा वो दुख। और जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते और अच्छी पोस्ट से रिटायर होते हैं और अच्छे उनको डिपॉजिट जमा पैसा उनका मिलता है और बच्चे उसी समय 50-50 कर लेते हैं और पिताजी के पास केवल पेंशन रह जाएगी, और फिर पेंशन के चक्कर में 31 तारीख ने पिताजी को पूछेंगे कब लाओगे पेंशन। एक भगत बता रहा था कि मेरा मित्र रिटायर हो रहा और बैंक के सामने मिल गया और साथ में उसकी पुत्रवधू, जितनी पेंशन मिल रही थी 5-4 हजार, वह सारी उस पुत्रवधू ने

यानी पैसे ले लें कोई बात नहीं, वो भी दुख निमट जा, नाले टॉर्चर भी कर दे, मतलब टॉर्चर भी गेल करें, और परमात्मा ने ये पहले बता रखे हमारे को कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जो परमात्मा की साधना नहीं करते। परमात्मा कहते हैं भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने वचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। भाई मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, बूढ़े हो जाते हैं आंखों से दिखाई नहीं दे, और बूढ़ा बुढ़िया की चारपाई गेट का डला करे, पुत्र वधू कह के जाएगी कि ध्यान रखना दूध को घी को कुत्ते बिल्ली ना खराब कर दे, मैं खेत में चारा लेने जा रही हूं। अब वो बुढ़िया ने दिखे को नहीं, कुत्ता बड़ा शैतान होता है, आंख में चोरनी करके रसोई में पाया करे। पुत्र वधू उनकी आई, देखा कुत्तों ने दूध भी खराब कर रखा और घी भी, तो बुढ़ा बुढ़िया को कहती है कि तुम तो छाती फूको मारी, तुम्हारा इतना सुख भी कोई ना, तुम कुत्तों ने हटा दो, यानी कुत्तों की से रखवाली कर दो। बूढ़ा हो वह पड़े खाट में सुने बचन खारे, कुत्ते तावण का भी सुख को ना ये छाती फूकन हारे। ये टॉर्चर और नाले होगा गिल। तो इस तरह परमात्मा कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, गीताजी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में 29 में, कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान पर आश्रित होकर उन तत्वदर्शी संतों के संपर्क में जाकर उस तत्ब्रह्म से यानी परम अक्षर पुरुष से, परम अक्षर ब्रह्म से और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से और सभी कर्मों से जो परिचित हो जाता है, तो वो केवल जरा मरण मोक्ष आए, जरा और मरण से मोक्ष के लिए यानी से छुटकारे के लिए ही प्रयत्न करते हैं। तो जरा मरण इसलिए बताया कि यहां बुढ़ापा सबसे डेंजरस टाइम है इस जीव का, और साथ में फिर मृत्यु, मृत्यु उस बुंडी और होनी डेफिनेट। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते थे जहां मृत्यु नहीं होती थी, और ये मृत्यु हमें कति गंवारा नहीं है, और यह हो रही है। इसलिए हमें यह सत्संग में आने से पता चलता है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जानकारी परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें दी है। वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और अपनी जानकारी आप ही बताते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। और यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी काल भगवान, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सर ब्रह्म सर पुरुष भी कहते हैं, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको एक श्राप लगा हुआ है, इसको एक बीमारी लगी हुई है, 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने की, उसके लिए इसने हमें यहां पर पाल रखा है। पुण्यात्माओं, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा को दयालु बताता है, और भगवान उसी का नाम होता है, परमात्मा उसी को कहते हैं जो दुख ना दे केवल सुख दे। पुण्यात्माओं, और यहां के हम जैसे पदार्थ देखते हैं, बहते हुए झरने, गंगा जैसी दरिया, और दिन रात बन रहे हैं, बहुत अच्छी पृथ्वी दे रखी है, इसके ऊपर बाग बगीचे, काजू किशमिश सेब संतरे, और साथ में कितने अच्छे और बहुत से पदार्थ हैं। इन सब को देख करके ऐसे लगता है कि परमात्मा बहुत ही दयालु है,
कितनी सुविधा हमें प्रदान

0: कर रखी है। और जब हम समाचार में सुनते हैं या आसपास के क्षेत्रों में से पता चलता है दुर्घटना हुई जिसमें एक ही परिवार के 3 सदस्य की मृत्यु होगी, कहीं पर भूकंप आ गया, अक्षेत्र का अक्षेत्र विनाश को प्राप्त हुआ, तो ऐसे हम देखें तो फिर परमात्मा की दयालुता शंका के घेरे में आ जाती है। पुण्यात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 18 से लेकर 22 तक एक विशेष व्याख्या की है, और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में इस गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा परमेश्वर बताया है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3, 8, 9, 10, 18 से 22, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16 और 17 में और भी बहुत से स्थानों पर गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62, 66, अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 46, इनमें अन्य कोई परमात्मा है जो परमेश्वर है गीता ज्ञान दाता से और उसके विषय में जानकारी दी है। तो इन सब की जानकारी देते हुए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 परमात्माओं की व्याख्या की है, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, प्रभु कहो, राम कहो, जो सरपुरुष है, क्योंकि यही पवित्र सदग्रंथ हम पहले भी पढ़ा करते थे लेकिन वो अब परमात्मा की वाणी सत सिद्ध होती है। 22 सतगुर बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं वो कुछ नहीं समझ पाते, अज्ञानी ही रहते हैं, और गुरु जी के बिना, सतगुरु के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, वो तो ऐसे रह गए जैसे थोथे भूसको, यानी जैसे धान होते हैं उन दानों को झाड़ लेते हैं, उसके पास प्राण रह जाती है, कोई उस प्राण के ऊपर लठ बजा रहा है, लाठी मारो, डंडे मारो, उसने पटक पटक का मार रहा, झाड़ रहा है, कुछ नहीं निकला है, वो थोथा भूस है। तो ऐसे ही जो तत्व तरसी संत के अभाव से जो ज्ञान वेदों को, गीता आदि अन्य सदग्रंथों को पढ़ते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे थोथे उसको कूट रहे हो, अर्थात यूजलेस, निराधार, यानी बगैर किसी लाभ के, किसी वो उसका प्रयत्न है, उससे कोई लाभ नहीं, यूजलेस। तो प्रसंग हम यहां ये क्लियर करना चाहते हैं कि एक तरफ तो परमात्मा दयालु कहते हैं और फिर यहां दया नाम की चीज नहीं, मां के पेट से नंगा आता है ये बच्चा, और शुरुआत कहां से हुई थी इसके, अपना कोई लंबे लंबे पत्ते वृक्षों के जोड़ तोड़ कर अपना शरीर को ढका करते थे, धीरे धीरे बुद्धि विकसित हुई, परमात्मा की दया हुई तो कपड़ों की खोज होगी और भी सुविधाएं बहुत सी हमने बना ली अपने स्तर पर। आप कहीं जंगल में जा रहे हो, वर्षा आ जाती है, सारे भी जो बीमार हो चाहे सुखी हो चाहे दुखी हो, ओले गिरते हैं, मट मट शर्म लागे, कट्टा कट की तो बाज दौड़ के जान बचा ली तो बचा ली ना, सारा फूट जाए, बेहोश हो जाए, फलड़ आ जाती है कि तग जाओ, कोई जच्चा मरो चाहे बच्चा मरो, रोगी मरो चाहे जवान मरो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं। तो इन बातों को देखकर फिर अब हमें डर लगने लग गया क्योंकि हमारी आंखों का जो ऑपरेशन हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार हट गया और हमने उस दयालु भगवान का पता लग गया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान है, पुरुष, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। श्रीमद भगवत गीता और इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, अधिक से अधिक यही बिक्री है और इसी का नित्य पाठ किया जाता था, नित्य स्वाध्याय के लिए इसी का प्रयोग होता रहा ज्यादातर। गीता प्रेस कोरपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद काका अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 16-17 में तीन परमात्मा अलग अलग दिखाए। अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर ये 16 इधर है, ये 16। इसकी संस्कृत भी हम देखेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है, कोई दिक्कत नहीं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर शर शर च अक्षर एव च सर सर्वाणी भूतानी कटुस्त अक्षर उच्यते। इसका अर्थ ये बना है कि इमौ माने इस, लोके माने लोक में, दिवौ माने दो, पुरुषौ माने परमात्मा प्रभु स्वामी है, दो भगवान है, एक सर एक अक्षर। इसको इस दोनों को हम यहां भी लगा सकते हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। इस संसार में दो भगवान हैं, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, ये दो परमात्मा हैं। और इसी प्रकार इनके लोक में सर माने नाशवान, सर्वाणी भूतानी, सभी प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अक्षर माने अविनाशी कही गई है। इव सर माने तो नाशवान, अक्षर माने अविनाशी, सर माने नाशवान, अक्षर माने जो नाशवान ना हो अविनाशी कहा गया। तो यहां इसमें दो भगवान लिखे, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके लोकों में स्थूल शरीर तो सबके नाशवान है, इनके भी दोनों के अक्षर पुरुष के भी, और जीवात्मा ये तो किसी की मरती ही नहीं, कुत्ते की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। इन्होंने अनुवाद किया है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष, पुरुष माने प्रभु हैं। इन्होंने लिखना था इस संसार में नाशवान और अविनाशी ये भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, भगवान हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता। अब यहां किया कमाल 17वें में, उत्तम पुरुष है तो अन्य है, पुरुष माने प्रभु, उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु पुरुषोत्तम तो अन्य है, ऊपर वर्णित इस सर पुरुष और अक्षर पुरुष से इन दोनों से कोई और है। उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये दास इस परमात्मा शब्द को डिफाइन करना चाहता, उसके लिए इतना कुछ आपके समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा उदाहरण बनाना पड़ेगा। उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुष भी लिखा है और परमात्मा भी लिखा है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, ऊपर वालों से दोनों भगवानों से कोई और है जिसे परमात्मा उदारतम माने कहा जाता है, जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह लोकतर्यम जो तीनों लोकों में आविष्य माने प्रवेश करके विभर्ति सबका धारण पोषण करता है वह अवय ईश्वर है। ये अवय शब्द है, ये अविनाशी, वो अविनाशी परमात्मा है, ईश्वर है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यानी सही भगवान श्रेष्ठ परमात्मा तो ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और उसको अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये दास बताओगा, अब उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, या पुरुष और परमात्मा दो शब्दों का प्रयोग या अक्षरों का प्रयोग हुआ। अब ऊपर 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में अक्षर पुरुष भी कहा, अक्षर पुरुष का अर्थ होता है अविनाशी प्रभु, और सर पुरुष का अर्थ सीधा ही नाशवान परमात्मा। पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये अक्षर क्यों कहा और फिर नाशवान कहा अक्षर पुरुष को। आत्माओं, ये सर पुरुष जो है, सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको ब्रह्म कहते हैं, और इसका ओम नाम है, ओम मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस अक्षर पुरुष का जो इन दोनों से अलग है, उस परमात्मा के पाने का ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप है। उसमें ओम जाप सर्वब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक का, ये अक्षर ब्रह्म का अक्षर पुरुष का, और सत ये भी सांकेतिक के दास बताएगा ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का यानी पूर्ण ब्रह्म के, ये इनका अलग अलग मंत्र है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है सर्वपुरुष यानी ब्रह्म, जिसको ज्योति निरंजन काल भी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। और ये तो सीधा ही सर्वपुरुष है, ये तो नाशवान है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ ही अविनाशी होता है, लेकिन अक्षर पुरुष भी नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। अब इसको डिफाइन करना है भाई, अविनाशी भी कहा और नाशवान भी कहा। जैसे इवन की एज देखनी पड़ेगी। ब्रह्म के तीन पुत्र हैं इस काल के ज्योति निरंजन के, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो वर्ष कैसे बनते हैं? एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों का मिलाकर के 43,20,000 वर्ष का समय होता है। इसको चतुर्युगी कहते हैं, चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे ऐसे 1,008 चतुर्युग का, ब्रह्मा जी का दिन इतनी ही रात्रि, इसको लमसम 1,000 युग का दिन इतनी ही रात्रि मानकर चलते हैं। और 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु, 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे सात गुना सतगुण विष्णु जी की, 700 वर्ष इस प्रकार बने हुए वर्षों के, और इससे सात गुना 4900 वर्ष श्री शंकर भगवान सप्तम गुण की, और 70,000 बार जब तमगुण ये शंकर की मृत्यु हो जाएगी, तब एक युग होगा किसका? उस अक्षर पुरुष का एक युग। और 1,000 युग का दिन, इसमें चतुर्युग नहीं है, इसकी काउंटिंग में ब्रह्मा जी की आयु में चतुर्युग है, और अक्षर पुरुष की आयु की कैलकुलेशन में चतुर्युग नहीं है, ओनली युग है। 1,000 युग ऐसे बने हुए हैं, 1,000 युग का दिन इतनी ही रात्रि है अक्षर पुरुष की, और 30 दिन रात का महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है अक्षर पुरुष की, यानी फिर भी मृत्यु है।
1: आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮ ਕਿਚਨ, ਬਾਰਸ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਵੈਨਿਟੀ, ਕਲੋਜ਼ਟ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਲ ਵਰਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲ ਸੇਖੋ ਜੀ ਨੂੰ 403-5000 ਜਾਂ ਫਿਰ 403-701-4947 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। HMP ਕਸਟਮ ਕੈਬਿਨੇਟਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 11, 2316, 27 ਐਵਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ 403-404-3500 ਯਾਨੀ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਇਰਸ, ਵੀਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਟਾਇਰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਪੇਅਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਨੂੰ 403-899-1985 ਜਾਂ ਫਿਰ 403-899-1984 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਵਾ ਟਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੰਬਰ 8616, 44th ਸਟ੍ਰੀਟ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ, ਕੈਲਗਰੀ।
4: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਕਿਆ ਆਪ ਨਸ਼ਾ, ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਕਲਹ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਤੋ ਅਵਸ਼ਯ ਪੜ੍ਹੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਤ ਅਨਮੋਲ ਪੁਸਤਕੇ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ, ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਵ ਗੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਯੇ ਸਭੀ ਪੁਸਤਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਮਰਾਠੀ ਵ ਅਨਯ ਭਾਸ਼ਾਓਂ ਮੇ ਭੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਵਿਧੀ ਔਰ ਮੋਕਸ਼ ਕਾ ਮਾਰਗ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਲਾਖੋਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਕਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਨਾਡਾ ਮੇ ਯੇ ਪੁਸਤਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਃਸ਼ੁਲਕ ਮੰਗਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਜ ਹੀ ਹਮਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jagatgururampalji.org ਪਰ ਜਾਏ ਜਾਂ 3065818061 ਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ।
3: ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ 102.7 FM ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੇਡੀਓ ਅਦਾਰਾ 102.7 FM ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

0: देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर।
1: अपने आत्माओं, अभी पवित्र श्रीमद् भगवत गीता है, आठवें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति और मंत्र के विषय में विशेष रूप से बताता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति प्रभाव गति। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म का, उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो प्राणी शरीर त्याग कर जाता है वो ओम नाम के जाप से जो परम गति होती है, जो उपलब्धि होती है, उसको प्राप्त करता है। अब यहां एक साथ, क्योंकि आप जी परमात्मा की तरफ में बहुत घूम रहे हो, आप जी ने बहुत से संत भी मिले हैं, आपने बहुत से संतों का लिटरेचर भी पढ़ा है, आपको ये विशेष बताने की आवश्यकता नहीं भगवान बजलो काम आओगा। आपको ये प्रमाणित करना अति आवश्यक है कि परमात्मा कौन है, कैसा है और कैसे मिलेगा, उसका डिफाइन करना आपके सामने अति आवश्यक है विद प्रूफ, तब भक्ति तो आप पर कर लोगे। जब ये पता लगेगा सत्संग रहकर सत्संग सुनाएंगे। तो अब ये डिफाइन करना चाहते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमें क्या अनमोल खजाना दे रहे थे और ये ज्ञानी अनाड़ी संतों ऋषि ब्राह्मणों ने गुरुओं ने नकलियों ने हमारे को उल्टा पाठ पढ़ा रखा था, कैक है भी नहीं बता रखा भक्ति का, एबीसी भी नहीं बता रखी। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, सुबह भी बताया था कि वो तत्परम कौन है जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में बताया है। उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में दिया है गीता ज्ञानदाता ने कि परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो अक्षर ब्रह्म को चाहे अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ और परम है। गीता जी अध्याय नंबर 5 और 7 में तो अपनी स्थिति बताता है, मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, और 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म के विषय बताता है, उसकी भक्ति जो करता है उस तत्वदर्शी संत से वो 3 मंत्र का नाम जाप लेके उसको प्राप्त होता है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी ब्रह्म लोक यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है, ब्रह्म का जाप है और ब्रह्म लोक में चला जाता है जिसको महास्वर्ग भी बोला जाता है, और वहां जाने के बाद भी फिर प्राणी को वापस जन्म मृत्यु में आना पड़ता है। गीता जी ज्ञान दाता ये ब्रह्म स्वयं कह रहा है गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो अनुवादी अनुवादकर्ताओं ने किया है बिल्कुल गलत रखे है, उसको अब स्पष्ट करना चाहते हैं। तो उसमें बताया कि जो उस परमात्मा की भक्ति करता फिर उसकी दोबारा जन्म नहीं होता, और अक्षर पुरुष की यहां आयु कैलकुलेशन बता रखी है 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में आपको दिखाते हैं। अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 में कहा है ये अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोक पुनरावृत्ति में, यानी ब्रह्म लोक तक भी सभी का जन्म और मृत्यु होता है। ये इन्होंने इस पर इसका विश्लेषण नीचे किया है, पुनरावृत्ति का क्या अर्थ होता है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि तत्वदर्शी संत के मिलने के पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ये देखिएगा अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 4, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार रूपी संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूं, यानी कोई और है गीता ज्ञान दाता से, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, प्रपद्यम ने पूजा करनी चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए, जहां जाकर फिर लौटकर संसार में नहीं आती। और गीता ज्ञान दाता कहता है तेरे मेरे भोजन बोलिए आगे भी होते रहे ब्रह्म लोक पर्यंत, ये सभी पुनरावर्ती में है, इन्होंने आगे अनुवाद गलत किया है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं है। नहीं तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 का ये सारा आशय खत्म हो जाता है। यहां इसका अर्थ बनता है कि जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु होती है, वो मुझे प्राप्त होकर फिर भी ब्रह्म लोक में जाते हैं तो भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इसका अर्थ ये है। अब इसका 8वें अध्याय का जो आपने 16वें श्लोक का सुना कि ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, इससे सिद्ध हुआ कि ओम नाम और ब्रह्म की साधना करने वाले भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं होता। यहां कंसेप्ट क्लियर करना चाहता है ये दास कि इन्होंने अनुवाद गलत किए हैं। 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में उस अक्षर पुरुष की आयु बता रखी है, 8वें अध्याय का 17वां श्लोक, ये 8वें अध्याय का और ये 17वां श्लोक, ये 16वां आपने देखा कि आ ब्रह्मनाथ यानी हे अर्जुन ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ति में वहां गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं। 17वां इसमें देखना सहसर युग पर्यंतम, सहसर युग है यहां, सहसर चतुर्युग नहीं है, ये ध्यान करना यहां, क्योंकि ये मूल संस्कृत को हम अनुवाद करेंगे, इन्होंने गलत किया हुआ। इसमें सहसर चतुर्युग नहीं है, सहसर युग पर्यंतम, अह माने दिन और यथ ब्रह्मणे माने इस अक्षर पुरुष का, ब्रह्मणे का अर्थ होता है क्योंकि यहां आयु कैलकुलेशन है, तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ बनेगा इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म का, बड़े भगवान का, ब्रह्म से जो बड़ा है, ब्रह्मणे बड़ा, उससे बड़ा विदु जान, रात्रिम रात्रि भी, युग सहस्रांतम, इसमें चतुर्युग नहीं है, अहो रात्रि विदु जना ब्रह्मा, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ लिख दिया ब्रह्मा, नहीं परब्रह्म लिखना चाहिए, परब्रह्म यानी उस ब्रह्म से नेक्स्ट प्रभु या अक्षर पुरुष का जो एक दिन है उसको इन्होंने अनुवाद गलत किया है। 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला, यहां पर सेंसर युग पर्यंतम, नोट चतुर्युग, इसमें चतुर्युग नहीं है, तो यहां गलती कर दी इन्होंने, इन्होंने ब्रह्मा बना दिया ब्रह्मण का, परब्रह्म को। अब जिसने ज्ञानी नहीं है तो वो ऐसे गुड़ गोबर कर देता है, सदग्रंथों का भी जो आशय बदल देता है उसका अपने नालायक बुद्धि के कारण। ब्रह्मा का यह ब्रह्मा नहीं, ये परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष का जो एक दिन है वो 1000 युग, 1000 युग का है, नोट चतुर्युग, चतुर्युग नहीं है, और इतनी ही रात्रि जानो, और जो पुरुष इसको तत्व से जानते हैं वह योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले, यानी वो तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं इन कोड वर्डों को। अब आजिए फिर अपने वहीं आते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। कैसे? जैसे भी आपको बताया था कि एक ब्रह्मा जी की आयु कैसे बनी थी, 1000 चतुर्युग का दिन उतनी ही रात्रि, 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, 100 वर्ष की आयु, उससे 7 गुना विष्णु की, विष्णु जी से 7 गुना शंकर जी की, शंकर जी की मृत्यु होगी इतने समय के उपरांत, ऐसे ऐसे 70,000 बार जब शंकर जी की मृत्यु हो लेगी तब एक काल की मृत्यु होगी, इस ब्रह्म की मृत्यु होगी जो गीता ज्ञान दे रहा है। इसके बाद क्या होता है, एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा, ये सभी प्राणी और ये काल और दुर्गा सभी मृत्यु को प्राप्त होकर उस परमेश्वर की कृपा से ये सभी प्राणी दूसरे लोक में चले जाएंगे, ब्रह्मांड में, वहां जाते ही परमात्मा का वर है इन दोनों को, दुर्गा और इस काल को, इनके एकदम वहां जाते ही युवा शरीर बन जाएंगे, और ये दोनों युवा होंगे, फिर उसके बाद ये नए सिरे से अपनी सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति आदि, फिर ये करेंगे कुछ दुर्गा वचन से कर देती है, कुछ ऐसे सृष्टि क्रम से करते हैं। तो वो जो ये काल मरेगा, एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, वो एक युग होगा, किसका? इस अक्षर पुरुष का। इसलिए यहां चतुर्युग नहीं लिखा है आठवें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी में, ओनली युग कहा है। 1000 युग का दिन और उतनी ही रात्रि होगी, ऐसे बना हुआ युग। एक काल की मृत्यु एक युग होगा, और ऐसे 1000 युग का दिन, इतनी रात्रि, 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष, और ऐसे 100 वर्ष की आयु होगी, किसकी? अक्षर पुरुष की। इस प्रकार इसको भी अविनाशी कहा, लेकिन ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। जैसे एक कप है चीनी का बना हुआ सफेद मिट्टी सी का, ये तो अंडरस्टूड है, ये तो समझो सरपुरुष है इसका, ऐसे मेटेरियल का शरीर, इसके प्राणियों का, इसका ये तो अंडरस्टूड है, फरस पर गिरा और टुकड़े टुकड़े, क्रैक जरूर होगा। और दूसरा एक स्टील का कप हो चाय पीने का, यानी स्टील धातु से बनी हुई कोई वस्तु हो, तो वो उस मिट्टी की धातु से बने हुए कप के तुलना में घना अविनाशी है, बहुत लंबे समय में हो तो होगा खराब, उसको जंग लगेगा, लेकिन वो पीरियड बहुत लंबा होगा। इस प्रकार उस धातु की तुलना में, मिट्टी वाली धातु की तुलना में शटील धातु अविनाशी कही गई है, लेकिन है इसका विनाश। जैसे सोना ये ऐसे जंग से विनाश को प्राप्त नहीं होता, तो इसको अविनाशी हम कहें। तो ऐसे ही अब इस अक्षर पुरुष को अविनाशी कहा कि इसकी इतनी लंबी आयु है, लेकिन मरेगा, मृत्यु इसकी भी होगी, लेकिन सर पुरुष की तुलना में इसको अक्षर पुरुष ही कहा। आगे फिर इसका निर्णायक ज्ञान दिया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, स्पष्ट कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई इन दोनों से कोई अन्य है। और परमात्मा इति उदारते, जो परमात्मा कहा जाता है। अब यहां परमात्मा की डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि परमात्मा उसे कहते हैं जो केवल सुख दे दुख ना दे। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो परमात्मा कहा जाता है, वो तीसरे नंबर का। और ये लोकतर्यम आविश्य विवर्ति अवेश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब पहले ये प्रसंग क्लियर करते हैं कि परमात्मा इति उदारते हैं। जैसे अभी आपको बताया था कि इस पृथ्वी के ऊपर हम सुविधाएं देखते हैं तो अद्वितीय लगती हैं। जमीन के अंदर कितना मीठा जल, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, फलदार वृक्ष, काजू किशमिश सेब संतरे, और ऐसे पदार्थ लाडू जलेबी बर्फी बालू शाही के में बना के खा ले। और फिर देखते हैं कि किस पड़ोस में देखा कि वहां हाहाकार मच गया, क्या हो गया, इकलौता पुत्र था मृत्यु को प्राप्त। फिर समाचार पत्रों में सुनते हैं कि एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक शेष बच गया छोटा सा बालक एक्सीडेंट में। तो फिर भगवान ने जो सुविधाएं दी थी उनका यूज क्या हुआ, हमें फिर वो दयालु कहां रहा प्रभु? परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 यानी 82 के मंत्र नंबर 1 से लेकर 3 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26-27, इनमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कबीर देव सतलोक से अपने अमर धाम से सनातन परम धाम से गति करके आता, वहां से चलकर आता है, और वो अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। तो उन श्रेष्ठ आत्माओं में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि धर्मदास तुम यहां जो अपनी संतान संपत्ति और जो सुविधाएं आप मान रहे हो हमारी है नहीं, काया तेरी है नहीं ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो इन दोनों को खो। जब काया तेरी नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है, विनाश होगा, तो अब माया तेरी कैसे होगी? तब धर्मदास जी ने पूछा है परमात्मा ये है क्या फिर ये सांग है? तब परमात्मा ने कहा धर्मदास ये ऐसी व्यवस्था है, ये कसाई है, ये काल यहाँ का जो भगवान है जिसको ब्रह्म कहते हैं, सर्वपुरुष जिसको कहते हैं, सर्वपुरुष सर्वब्रह्म भी इसी को कहते हैं, ज्योति निरंजन इसी का नाम है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए अप्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण काल नहीं थे, न पहले कभी काल कहा गीता जी ज्ञान से अलग, ना बाद में कभी अपने आप को काल कहा। वो काल बोल रहा था भूत की तरफ उसमें प्रवेश करके प्रेतवत, मैं काल हूं और ये देख मेरा ये रूप है, 1000 भुजा 1000 पैर 1000 फंड दिखाई दिया, कर्जा पाट दिया इसे योद्धा का। भगवान तो भगवान के दर्शन के लिए हम जाते हैं, अरीसा भगवान होता है, इसका था तू मर जा गीता जिस अर्जुन ने दिखाया कि मेरा यू असली रूप है, तो भगवान के दर्शन इसलिए करने जाते हैं। देखते आत्मा प्रसन्न हो, शीतल स्वभाव हो, बोलने की विनम्रता हो, प्यार मिले, दुख ना हो, सुखी सुख हो, इसलिए भगवान को ढूंढते। ऋषि बुढ़े ने देखते कल जा पाट जा पता उसने के गड्ढा इसे भगवान ने, तो वो कहे ये है मेरा असली रूप और मैं काल हूं और हम इसकी पूजा किया करते थे। और इसकी पूजा करने वालों को महर्षि कहा करते थे, बड़े विद्वान है। तो परमात्मा ने बताया काल है भाई, ये पहला तो सरूमति साधी खजन भगवान पड़या है, और जब इसका असली चेहरा सामने आता है इसे करतूत देखा तो काल है। जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधाएं करता है, चरागाह बनाता है और उसके चारों तरफ हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए उनके लिए एक डिफेंस तैयार करता है, ऊपर छाया बनाता है, शेड बनाता है उनके लिए, पानी का तालाब बनाता है, उनको पानी पिला कर लाता है, चराता है, उनके ऊपर का हाथ उठ फेरे उनमें लाड। तो वो देखता है जब कसाई आता है पशुओं के अंदर अपने, और वो देखता है से हाथ ला करके, वो तो नहीं देखे यू कै किलो का हो गया, कितना मांस बना इसमें, और वो बोड़ी आत्मा नहीं समझे बकरे और बकरियां कि हमारा कितना दयालु स्वामी है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी सुविधा का ध्यान रखता है, ये हमारा प्यारा है, उनको प्यारा समझकर उसको चाटते हैं, उसके ऊपर पैर फैलाते हैं, सीने से लगाना चाहते हैं, और वो इन्हों देखे ये कितने किलो का हो गया, कितने का बिकेगा। उधर तो सुविधा देता है जब तो वो अच्छा लगे, और फिर जब आ जा दो चार बकरों की डिमांड, वो न देखता किसका बेटा जाएगा, किसकी माँ जाएगी, किसकी बुआ कटेगी, वो तो लाठी लेकर आके ले नारी काट देता मोटे मोटे छाट। तो ऐसी व्यवस्था इस काल के लोक में हमारी श्री विष्णु पुराण में स्पष्ट किया है, क्योंकि ये पुराण जो है श्री विष्णु पुराण जब शुरू होती है इसमें काल भी विष्णु रूप धारण कर लेता है, ब्रह्मा का भी रूप धारण कर लेता है, शिव जी का भी रूप धारण कर लेता है, और साधक जन जो साधना करते हैं ओम नाम के जापते किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप, वो असमंजस में पड़े रह जाते हैं कि ये जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये रजगुण तमगुण सतगुण यही है ये भगवान ओम नाम के जाप से जो हमें दिखाई देता है, ऐसे ये न अभी तक सारी बात बिगाड़ रखी थी। तो अब ये क्या कहते हैं, जैसे विष्णु पुराण स्टार्ट होती है ये उस काल के बारे में जानकारी दे रहा है, ये स्पष्ट करता है। देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक हैं श्री मुनि लाल गुप्त और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 2 के ये प्रश्न नंबर 4 पर श्री विष्णु पुराण अध्याय नंबर 2 इसके मंत्र नंबर 15 में श्लोक नंबर 15 में हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, हे द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त इसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। अब ये अनुवाद करता और ये इसके वक्ता भी अनभिज थे, अज्ञानी थे, इन्होंने कोशिश की है डिफाइन कुछ करने की पर नहीं कर पाए। यहां हे द्विज ये परब्रह्म कह है, परब्रह्म कह है इस काल में विष्णु ने विष्णु रूप में दर्शन देते। यहां देखिएगा अध्याय नंबर 2 ही चल रहा है और इसका मंत्र नंबर 27 में, 15 आपने पढ़ा, 27 पढ़ा। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने और पुरुष के इस काल के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब दुर्गा के साथ रहता है तब तो ये विष्णु रूप, ब्रह्मा रूप या शिव रूप धारण करता है, और दुर्गा को पार्वती, ब्रह्मा के साथ सावित्री रूप में, विष्णु के साथ लक्ष्मी रूप में, शंकर के साथ पार्वती रूप में रखता है। तो तब तो ये इन रूपों में रहता है, विष्णु रूप लक्ष्मी के साथ विष्णु रूप रहता है, और जब दुर्गा को छोड़ देता है तो ये अपने किस में ब्रह्मांड में जाकर के अपने वास्तविक काल रूप में विराजमान हो जाता है। यहां लिखा है कि मैत्रेय प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के इस काल के दुर्गा से पृथक स्थित हो जाने पर ये किस में ब्रह्मांड में चला जाता है, भगवान विष्णु का काल रूप परिवर्त होता है। और यहां इसी के बारे में जिक्र है ये कि हे द्विज, परब्रह्म यानी इस काल का, विष्णु कहो चाहे काल, महाविष्णु कहो चाहे काल कहो, ब्रह्म है ये, परब्रह्म गलत लिखा है। हे द्विज, उस परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, और अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, साकार और निराकार जो ना दिखता और किसी रूप में आ जाता है, और परंतु तथा काल उसका परम रूप है। प्रथम पुरुष उसका भगवान जैसा है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो इसका ऐसा दिखे है, फर्स्ट इंप्रेशन तो देखे भाई भगवान ने बड़ी सुविधा दे रखी है, बड़े देखो झरने बह रहे हैं, कि तो बाग बगीचे खड़े हैं, है? और बड़ी सुंदर हवा चल रही है, नीचे जल है, पानी मीठा है, तो यू देखा तो यू भगवान ने पड़िया है, परमात्मा दिखे। और जब यू हमारी दुर्गति कर रहा, गैस काट रखी, किसी का बेटा मार दिया, किसी बेटी मार दी, कैंसर होगी, किसी को कुछ दुख, कहीं ओले पड़ गए, सिर फूट गए, ब्लड मर खत्म हो गए, नो देखा तो यू इसका असली रूप तो यू है, ये काल है। तो यहां बताया है कि जैसे कसाई बकरे पालते हैं, उन बकरों को वो सुविधा देता तो लगा है ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन उनकी इतनी बुद्धि काम नहीं करती कि शाम में तीन चारा निकाल ले गए, एक कड़च कर दिए। तो अभी तक हमारी सती थी, हमारी बुद्धि यहां सेट थी, हमें पता ही नहीं था हम करें तो करें क्या, कहां जाऊं। तो यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में, पुण्यात्माओं ये आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लिखे हुए या सांगी और बदनी और इन फिल्मी कलाकारों के बनाए हुए गाने नहीं है, ये बहुत ही अच्छा विधान प्रभु का दिया। इसमें एक एक शब्द का बहुत अलग से विश्लेषण होता है, बहुत महत्व गुड रहस्य है। उत्तम पुरुष है तो अन्य है, परमात्मा इति उदारते, वास्तविक भगवान श्रेष्ठ प्रभु तो ऊपर वाले सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और ही है, जिसको परमात्मा कहते हैं। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, अच्छी आत्मा कहते हैं, जो उत्तिष्ट आत्मा है वास्तव, जिसको परमात्मा कह सकते हैं। अब कर्ण तो परमात्मा हम इसने भी कहे हैं, लेकिन इसको परमात्मा कह जरूर है, पर गुण तक होना परमात्मा वाले, परम आत्मा वाले, श्रेष्ठ आत्मा, नेक आत्मा, चीटी तक भी ना मारे, केवल सुख दे और दुख ना दे, उसको परमात्मा कहती। तो वो सतलोक में सतपुरुष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो अविनाशी परमात्मा। अपने आत्मा इससे एक और बात समझ में आओगी, अपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में क्या व्याख्या की है, कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, और इसकी तीनों गुण रूप शाखा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष के सभी अवयवों को, सभी पार्ट्स ऑफ द टेरी के जो बता देगा भिन्न भिन्न के जड़ कौन भगवान है, तना किसे कहते हैं और डार किसे कहते हैं और शाखा किसे कहते हैं और पत्ते क्या है। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये बताया है कि कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिर करके साधना करता है, कोई अन्य देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई स्वाध्याय ही करता है, कोई केवल अहिंसावादी ही है, यानी अपनी अपनी साधनाएं वो ऐसे कर रहे हैं, और प्रत्येक साधक अपनी साधना को पाप नाशक जानता है, यानी जो भी कोई क्रिया कर रहा है वो उन्होंने सोचा या बढ़िया है मुझे सुख देगी। अगर उसको ये पता हो ये सुख नहीं देगी, पाप नाशक नहीं है, अच्छी नहीं है, तो तुरंत त्याग दे वो, तो वो अपनी अपनी साधनाओं को वो अपनी अच्छी मानकर कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की विस्तृत जानकारी चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी का है कि इस तरह की विस्तृत जानकारी उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सचिदानंद घन ब्रह्म मुखे शब्द लिखा है, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ होता है उस सचिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, उसके अपने मुख से बोली गई वाणी में वो विस्तार से कही गई है। और उस ज्ञान को, वो तत्व ज्ञान है, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व के बारे में जानकारी देंगे, फिर जैसे वो बतावे ऐसे कर। और वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा, 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में उसका जानकारी दे दी, पहचान बता दी कि जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को सब अवयवों के साथ साथ भिन्न भिन्न बतावेगा वो तत्वदर्शी संत है। पुणात्माओं, ये एक ऐसा विद्यालय है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पढ़े हुए बच्चे मोक्ष प्राप्त करेंगे, सतलोक चले जाएंगे। इसलिए ये दास एक टीचर बनाया परमात्मा ने, और टीचर का प्रथम कर्तव्य होता है कि स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को सिलेबस से ही जानकारी दे, मनमुखी बाहर की कोई कथा ना सुनावे। अभी तक हमारे को सिलेबस का नाम लेकर के आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कराई गई है, इसलिए आज तक हम ये नहीं जान पाए कि ब्रह्मा विष्णु महेश की सच्ची थी क्या है। ये जन्मते हैं, इनको हम अजरो अमर कहा करते थे, इनका इतिहास, इनकी जीवनी बताती है कि इतना नासवान है, इनके माता पिता भी हैं, हमें बताया गया था इनके कोई माता पिता नहीं है। तो इसे सिद्ध है कि हमारे जितने भी पूर्वज थे इन अनाड़ी अज्ञानी गुरुओं ने, तो अब ये शीघ्र ही बहुत विस्तार में हो जाएगा अपना ये मार्ग, और सभी को सुख होगा इसी मार्ग से, ये सब हमारे जो विकार दूर होंगे, माया जोड़न की होड़ जो लगी हुई है जिसके कारण अदंधे हो लिए हम, आगा पीछा कुछ नहीं देख रहे, इससे वो शांत होगा एकदम, जैसे आग के ऊपर पानी गिर जाता है। इस ज्ञान से पूरे विश्व में इतनी शांति बन जाएगी, और इस ज्ञान के बिना और कोई विकल्प ही नहीं है। तीसरी इस दास का उद्देश्य है कि आपको इतना रंग दूं कि चाहे आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाए, आप इस ज्ञान में मारने उससे हार नहीं मान सकते, उसको झुका के छोड़ोगे वो मानो चाहे ना मानो, लेकिन कुछ दिन के बाद उसको मानना भी पड़ेगा।

0: सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।
1: गैलग्रीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसीं रियो बैंक्वेट हाल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। एबीएम कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या आईटी प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जा फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैन लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह टिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारां तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लेने लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेने लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो, 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street, North East, कैलगरी

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसीं फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर

बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात मह जोत, जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहे।

राग आसा महला चौथा। सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम आगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुणाख बखाणा। जो सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुग मह सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जे निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करै हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वडावर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैडा साई जो तौ भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछुड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाणै। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेख है जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरडै पहिले निवासा पानी पावक तिन्हें किया। पंक जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबी अले।
मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की हे तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जापता

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो वाच बेनती चौपाई हमरे करो हाथ रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहा हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाद मोहे बिचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सभा करतारा मोर अच्छा निज करदा करिया सब बैरन को आज संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याओ जो वर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ द मुझे अवरिया मरण काल का त्रास निवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तोज जु करिहो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के अंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा।

गोचर स्थूला सा परकृपा दृष्टकार फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। के की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जावुद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जावया करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वादन सृष्ट सब धारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद आरालम। रंका निर्विका निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेवना पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुय तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप नूप सुरूपा, रंग भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट भयो संकर अकैठा। सागरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप सजंपव। अव रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करोरण काता। जे अस तुज तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित है मरे। पुरख जवन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताकि काल निकट न आए हैं। रक्षा होए तहें सब काला, दुष्ट रिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तन कमह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह छ सकै न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा।

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद स्वै बहु भेद कह हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सागर।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया, सतगुर तां पाया सह सेती मन वजियां बाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया, शब्दों तां गावो हरी केरा मन जनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल हो तू मन मेरे दुख सावे सारना। अंगीकार हो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला स्मृत स्वामी सो क्यों मनहो बिसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाहीं कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाईया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सा पूजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दी आए बड़ियाईया। कह नानक सुनो संत हो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। बाजे पंच शब्द तित कर सुभागै, कर सुभागै शब्द बाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर।

चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत। देग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहा।

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला नावा मानरे प्रभु के शरण विचारो। जह सिमरत गन कासी उदरी ताको जास उर तारो। मान रे प्रभु के शरण विचारो। जह सिमरत गन कासी उदरी

दुख हरता एह बिद को स्वामी तै काहे बिसराया। जावहि शरण गहि कृपा निध,

कर्ण राम कहत बंधन तेह छूटा। महिमा नाम कहा लो वर्ण राम कहत बंधन तेह टूटा। अजामल पापी जग जाने निमख बाहे निस्तारा।

नानक कहत चेत चिंतामन तैपी उत्तर पार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
3: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4